ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 और 5 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम

0: चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणपति की आराधना से।

हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है कि सेवा ही सर्वोपरि है, सेवा ही धर्म है। और यदि वो सेवा किसी असहाय की हो, किसी बुजुर्ग की हो, किसी लाचार की हो, तो उस सेवा का फल हमारे साथ इस लोक से परलोक तक जाता है। और यदि इसी सेवा का स्वरूप ईश्वर की भक्ति हो, ईश्वर की सेवा करने का अवसर मिले, जबकि इस अवसर को तलाशने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, जो मनुष्य जब चाहे जितना वक्त निकले अपनी श्रद्धानुसार ईश्वर भक्ति कर सकता है, तो फिर उनका वरदहस्त जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का क्षरण कर हमें परम सुख परम आनंद की प्राप्ति कराता है। और मनुष्य माया मोह के बंधन से मुक्त होकर इसके सभी प्रकार के तनावों तापों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की अनुभूति के परम सुख में उसका जीवन व्यतीत होता है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: श्रोताओं एक सूचना सुनिए, दिनांक 30 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के अंडाशय में गांठ की समस्या व उससे जुड़े अन्य रोग विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता यादव। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 तक फोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 0532-2970-462 और दूसरा नंबर है 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आपका पुनः स्वागत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। इस संसार में याचनाओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम जिस भौतिक वस्तु की लालसा पालते हैं, उसे प्राप्त कर लेने के बाद एक नई लालसा हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हम अनेक कार्यों की पूर्ति हेतु मन्नत मांगते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हम इस काबिल हो गए हैं कि हम कुछ ईश्वर को दे सकें, जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए दे रखा है? सब कुछ उन्हीं की कृपा से है, प्राण वायु, अमृत जल, ये सब कुछ जिसने बनाकर, रहने योग्य धरती, ये पर्यावरण, हमें सब कुछ बनाकर दिया है, हम भला उन्हें क्या दे सकते हैं? अगर हमें कुछ अर्पण करना है तो हम उनके चरणों में अर्पित करें अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और अपने जीवन को संतुलित करें उनके दिखाए मार्ग पर, उनके दिखाए आचरण के अनुगामी बने और अपने इस जीवन को सफल सार्थक बनाएं।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना बस यहीं तक। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग पर लेकर के चलें, इसी कामना के साथ अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए अल्बर्ट आइंस्टीन के विचार।
1: मनुष्य का सही मूल्य उसके स्वार्थ से छुटकारा पाने के माप तथा ज्ञान द्वारा आंका जाता है। ज्ञान की परिभाषा द्वारा मनुष्य की अच्छाई और बुराई को आंकते हुए प्रोफेसर आइंस्टीन ने शिक्षा की भी व्याख्या की और कहा कि ज्ञान का सतत प्रयत्नों द्वारा पुनर्नवीकरण होते रहना चाहिए। ज्ञान एक संगमरमर की मूर्ति के तुल्य है जो मरुस्थल में सतत झंझा के प्रहारों से प्रताड़ित होती है। यदि इस मूर्ति को प्रकाश में चमकना है तो इसकी सफाई होनी आवश्यक है। मैं इसे सेवा कार्य के लिए हाथ बढ़ाना चाहूँगा। ज्ञान के मंदिर अर्थात पाठशालाओं के कार्यों की विवेचना करते हुए वे कहते हैं कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ज्ञान की एक अधिकतम राशि को लोगों तक पहुँचाने का कार्य पाठशालाएँ करती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ज्ञान तो निर्जीव है किंतु पाठशालाएं जीवित हैं। इन्हें चाहिए कि नवयुवकों में वे गुण एवं क्षमताएं भरें जो विश्वव्यापी कल्याण के लिए आवश्यक हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि वैयक्तिकता विनष्ट हो जाए और मनुष्य मात्र चींटी या शहद की मक्खी बनकर रह जाए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने एवं सोचने वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण हो। शिक्षार्थियों के विषय की चर्चा के अतिरिक्त उन्होंने अध्यापकों के एवं उनके विद्यार्थियों के आपसी संबंध में संबोधित किया कि विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि अपने विद्यालय में जो कुछ वे सीखते हैं वो संसार के अन्यान्य देशों में सदियों के उत्साहपूर्ण शोध कार्यों के परिणाम हैं। ये तुम में इस हेतु भरा जा रहा है कि ये तुम्हारी विरासत है जो तुम लो, आदर करो, इसमें वर्धन करो तथा एक दिन अपने बच्चों को इसे दे दो। इस प्रकार हम नश्वर लोग सामान्य लोगों के मध्य एक शाश्वत वस्तु को स्थापित कर अमरता प्राप्त कर लेते हैं। अगर छात्र एवं अध्यापक यही बात अपने मस्तिष्क में सदैव रखेंगे तो वे जीवन में एक सार्थक उद्देश्य को प्राप्त करेंगे तथा देश के प्रति भी उपयुक्त भावनाओं को ग्रहण करेंगे। अपने सिद्धांत सापेक्षतावाद के विषय में उन्होंने एक बार कहा।

0: था कि कभी कभी सोचने लगता हूं, सापेक्षतावाद के सिद्धांत को आखिर मैंने ही क्यों जन्म दिया। मेरे ख्याल में इसका कारण ये है कि प्रौढ़ वय का औसत आदमी स्थान और समय की समस्याओं के बारे में शायद ही कभी समय निकालता है। इन चीज़ों के बारे में वो बचपन में सोच चुका होता है, पर मैं स्थान और समय के बारे में सिर्फ तब सोचने लगा जब मैं बड़ा हो चुका था। स्वाभाविक है कि मैं एक बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा गहराई से सोच सकता था। सिद्धांत की थोड़े से शब्दों में व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था, पहले ये माना जाता था कि अगर भौतिक वस्तुएं ब्रह्मांड से गायब हो जाएं, तो सिर्फ समय और स्थान बच रहेंगे। सापेक्षतावाद के अनुसार समय और स्थान भौतिक वस्तुओं के साथ ही गायब हो जाते हैं। सापेक्षतावाद के सिद्धांत के साथ काल अथवा समय पर आपका विचार था कि ये एक अपरिवर्तनशील सामान्य प्रवाह है जो अपरिमित विगत से परिमित भविष्य तक प्रवहमान रहता है। समय को केवल एक बोधगम्य वस्तु तथा घटनाओं की व्यवस्था का रूप बतलाते हुए आपने कहा था कि किसी व्यक्ति का अनुभव हमें घटनाओं के क्रम में व्यवस्थित दिखता है। इसे मापना संभव नहीं है। हम केवल पहले तथा बाद की घटना को कहकर आजमा सकते हैं। हम घड़ी और कैलेंडर की सहायता से काल अथवा समय के बारे में एक धारणा बनाते हैं, परंतु घड़ी या कैलेंडर से व्यक्त समयांतराल अपने आप में पूर्ण अनुपात नहीं होता। सभी घड़ियां सौरमंडल से व्यवस्थित हैं। जिसे हम एक घंटा कहते हैं, वो वस्तुतः अंतरिक्ष में एक तरह का माप है। वस्तुतः बिना संदर्भ के साइमल्टेनिटी, समक्षणिकता नाम की कोई चीज़ नहीं।
1: अभी आप एल्बर्ट आइंस्टीन के विचार सुन रहे थे। अब आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं राज रतन वर्मा से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। बातचीत का विषय है भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, वे जानत हैं कि भाई कोनो भी फसल हो तो ओके उचित पैदावार होए के लिए, उचित बढ़वार के लिए तमाम तरह के खाद पानी दिया जाता, आ काफ़ी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जिनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका भी होता पैदावार में। तो आज बातचीत के जौन विषय है एक मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व का महत्व, ए पे बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटन श्री राज रतन वर्मा जी, जौन की इस सब के जानकार मनाई बाटन। वर्मा जी आपके कार्यक्रम में स्वागत बा। एक विशेषज्ञ के नाते हम आपसे जानना चाहब कि मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या महत्व, बताओ एक बारे में कुछ।
2: हरित क्रांति के प्रारंभ में किसान भाइयों ने खेतों में नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटास की समुचित व्यवस्था कर निस्संदेह उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की तथा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी हुआ, परंतु कई विगत वर्षों से पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।
1: जी जी।
2: इसका मुख्य कारण मिट्टी के स्वास्थ्य का गिरना तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने लगे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: जिसका फसलों पे नाना प्रकार के रोग व्याधियां भी दिखाई देने लगी हैं।
1: जी जी। तो हम आपसे ये जानना चाहें कि सूक्ष्म पोषक तत्व का होते हैं, कौन कौन है, बताएं आप कुछ।
2: मुख्यतः देखा जाए तो मुख्य पोषक तत्व 8 होते हैं, जिसमें आपका जिंक है, लोहा है, कापर, मैग्नीज, बोरान, मोलिडेनम और कोबाल्ट है।
1: अच्छा अच्छा। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है भैया, अब इनके कमी से का का रोग व्याधि हो सकते हैं, कितना हो चाहे मात्रा, एक बारे में कुछ बताओ आप जोन भाई।
2: देखें जिंक की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुड़ जाती

0: जाती हैं, तने की लंबाई भी रुक जाती है।
1: अच्छा अच्छा
0: जिंक की कमी से धान में खैरा रोग नामक बीमारी भी होती है।
1: अच्छा अच्छा
0: जिंक की कमी से आम नींबू लीची में लिटिल लीफ भी लग जाते हैं,
1: यानी बाग बगीचा में भी प्रभाव पड़ता है।
0: भूमि में जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करने से इनका निदान हो सकता है।
1: अच्छा, ये तो आप जिंक के बारे में बताएं, और भैया कौन तत्व होते हैं?
0: लोहा।
1: अच्छा,
0: लोहे की कमी से पत्तियों में हरी माहिनता हो जाती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं
1: जी,
0: पत्तियों की सिराओं में पीलापन आ जाता है।
1: जी जी,
0: लोहे की कमी को दूर करने के लिए 20 से 25 किलो फेरस सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में डालना चाहिए किसान भाई।
1: वो एक पहले भैया,
0: हाँ बोने के पहले डालना
1: अच्छा,
0: चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, और भैया कापर के विषय में कुछ बताएं।
0: कापर की कमी से पौधों की नई पत्तियों में सड़न हो जाता है।
1: जी जी,
0: बढ़वार में कमी आ जाती है, पत्तियों का रंग हरा होने लगता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: कापर की कमी को दूर करने के लिए कापर सल्फेट का
1: अच्छा
0: 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में जुताई के समय किसान भाइयों को देना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, ये तो भैया कापर के विषय में बताएं, और भैया कौन तत्व है नुकर का कमी?
0: बोरान की कमी। आप देखें, बोरान की कमी से पत्तियां मोटी हो जाती हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: और मुड़ जाती हैं। उसकी कमी से आम में आंतरिक बीमारी, आंवला में फलन सड़न,
1: अच्छा फल सड़न,
0: हाँ मूली में मूली और गाजर में ब्राउन हार्ट रोग लग जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, करें निदान के लिए क्या करें?
0: इसके निदान के लिए बोरान की कमी को दूर करने के लिए 1 से 2 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर किसानों को मिट्टी में मिला देना चाहिए जुताई के समय।
1: अच्छा, और भैया मैग्नीज के बारे में कुछ बताओ, मैग्नीज कमी को दूर करने के लिए क्या करें चाहे?
0: दूर करने के लिए मैग्नीज सल्फेट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिलाना चाहिए।
1: अच्छा, मैग्नीज सल्फेट 20 से 25 किलोमीटर
0: मिलाना चाहिए।
1: अच्छा, मॉलिब्डेनम भैया?
0: मॉलिब्डेनम की कमी के कारण पत्तियों की सिराओं के मध्य में हरी माहिनता हो जाती है।
1: अच्छा,
0: इसकी कमी फूल गोभी नींबू के पत्तियों में पाई जाती है।
1: अच्छा अच्छा, करें निदान के लिए क्या करें?
0: इसके निदान के लिए मॉलिब्डेनम के निदान के लिए सोडियम मोलिडेड 3 से 6 किलो भूमि में जुताई के समय
1: प्रति हेक्टेयर
0: देना चाहिए,
1: बढ़ के 4 बीघा हमें। भैया हो तो मॉलिब्डेनम हो, और करे अलावा भैया कौन कौन तत्व हैं?
0: 2 तत्व और हैं, क्लोराइड है और कोबाल्ट।
1: अच्छा,
0: इसका अभी भूमि में कमी नहीं बा, इसलिए इसको जो है
1: अच्छा यानी तो मिल जाते पर्याप्त मात्रा
0: इसमें भूमि में पर्याप्त है।
1: अच्छा अच्छा भैया हो, ये तो आप बताएं कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, अब ये कैसे जानकारी होए कौने किसान भाई ने कौने खेते में कमी वे कही जाए, कौनों चीज़ के लिए माटी के जांच करावे चाहे? आजकल देखा है वो का कहा थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बना था, एक बारे में कुछ आप बताओ।
0: आप तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछ लेना है। मिट्टी की किसान भाई को तो मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, उससे उनको ये मालूम हो जाए कि हमारी मिट्टी में इनकी मात्रा कितनी है
1: जी,
0: कितनी होनी चाहिए
1: बताओ,
0: और कितना हमको देना चाहिए।
1: हाँ हाँ,
0: जैसे खेतों में मान लीजिए कि इनके खेतों में 0.4% जिंक सल्फेट है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इनको जब जांच कराएंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि हमारे खेते में इतना है।
1: अच्छा,
0: तो हमको इतना दें, 20 से 25 किलो देकर अपनी पूर्ति कर सकते हैं।
1: अच्छा, मैं संतुष्ट रहे भैया कि इतना कमी है, इतना
0: देना चाहिए। अच्छा
1: अच्छा,
0: किसान भाइयों को ये जरूर कराना चाहिए मिट्टी की जाँच, क्योंकि हर तहसीलों में हर जिले पर है।
1: भैया हो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाला जोन बनत बाटे, एकरे बारे में का बतावे चाहते हैं?
0: मृदा
1: स्वास्थ्य यहीं से संबंधित वह बाटे है, माटी की जांच से ही संबंधित
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार की स्कीम है। इसमें हर किसानों को वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कराना है।
1: जी जी,
0: उसमें यह है कि उसमें उनकी पूरी खेत की मिट्टी एनपीके से लेकर माइक्रोन्यूट्रिएंट तक सब चेक करके उनको कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: जिसमें वो निशुल्क है और हर किसानों का हर गांव में एक ग्रिड बना हुआ है।
1: अच्छा,
0: उस गांव का
1: अच्छा,
0: खसरा खतौनी नक्शा लेकर
1: जी,
0: उसमें 4x4 का एक ग्रिड खींचा जाएगा।
1: हाँ हाँ,
0: उसके बीच में से एक किसान को चुना जाएगा।
1: अच्छा अच्छा, बताओ भैया। हाँ,
0: उसको चुना जाएगा।
1: हाँ,
0: जिसमें एक किसान का लिया जाएगा तो वो चार बाई चार का होगा, तो उसमें एक किसानों का लिया जाएगा
1: खेत का नमूना।
0: हाँ, नमूना तो इसी को चेक किया जाएगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: और उसके माध्यम से उसके अंदर में जितने भी किसान होंगे वही रिक्वायरमेंट दिया जाएगा,
1: अगल बगल जितना खेत रहेंगे
0: वही संतुति दी जाएगी।
1: अच्छा,
0: कि इसी ऑरेंज में आपकी मिट्टी
1: ये चीज कमी है।
0: हाँ, इस कमी है, इतना मात्रा।

0: आपको देना चाहिए उसी के एवरेज में होगा।
1: अच्छा
0: भारत सरकार की यही स्कीम है कि इसको अधिक से अधिक लोगों को कार्ड देकर जागरूक कराया जाए कि उनको जो है उनके खेत में क्या क्या कमियां।
1: तो खेते में खुदे जाते हैं कि माटी के ले
0: नहीं,
1: जाए पर
0: यहाँ पे वो कर्मचारी लगे हुए हैं, एसएमएस बीटीएम है और टीए के माध्यम से लगे हुए हैं लोग, जो वो जाते हैं और उनका मिट्टी स्वयं लाते हैं और हमारे लैब में ले आकर पहुंचाते हैं, जिससे हम चेक करके फिर उनके माध्यम से कार्ड देते हैं, फिर वो किसानों को कार्ड उपलब्ध कराते हैं।
1: अच्छा तो करे लिया का कौन शुल्क देख पड़त भैया?
0: नहीं, इस स्कीम में कोई शुल्क नहीं देना है।
1: अच्छा
0: इसके
1: अच्छा
0: अदर आएंगे किसान भाई
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसमें एनपीके के लिए हम 29 रुपये
1: अच्छा
0: और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हम जो है कि 102 रुपये
1: अच्छा
0: शुल्क
1: अच्छा
0: लगता
1: तो
0: है।
1: रकबा के हिसाब से भैया हमें खाता नंबर हो तो है कि खेते की नंबर है में ये कमी बांटे है।
0: हाँ, वो खतौनी या खसरा नंबर लिख कर लाते हैं या पहचान
1: अच्छा
0: लाते हैं, जैसे
1: अच्छा
0: कोई
1: अच्छा तो भैया हो तो ये तो मान लो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गई ऐसे काफ़ी सुधार भी बांटे है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो अगर कमी ना रहा है तो फसल बहुत अच्छी हो तो भैया।
0: पैदावार आपको बहुत अच्छी मिलेगी।
1: अच्छा अच्छा
0: पैदावार में आपके होगी, दाने अच्छे होंगे, पेड़ पौधे अच्छे होंगे,
1: और गुणवत्ता भी बढ़िया हो भाई।
0: गुणवत्ता भी बढ़िया होगा।
1: अच्छा अच्छा भैया हो राज रतन वर्मा जी आप आएन सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्व के बारे में बहुत अच्छे से आप बताएं हमारे किसान भाई एक लाभ ले आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, अब इस विषय पर आप राज रतन वर्मा से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत सुन रहे थे। किसान भाइयों अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी की वार्ता, बच्चों में डायरिया, कारण, लक्षण और उपचार।
1: श्रोताओं नमस्कार। इस बार जो हम एक साक्षात्कार लेकर के आए हैं वो बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वो हमारे नवजात बच्चों से जुड़ा हुआ है, नवजात बच्चों से संबंधित है। लेकिन तब क्या होता है जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है रात बिरात, या सच बताएं तो सूझता ही नहीं कि अब करें क्या। उस समय हम जाते हैं डॉक्टर के पास। और अगर हम नवजात बच्चों की या छोटे शिशुओं की बात कर रहे हैं तो उनमें सबसे आम समस्या जो बारिश के मौसम में होती है वो है डायरिया की, या ये कभी भी हो सकती है। डायरिया क्या है, हमको इसको किस तरह से देखना चाहिए, किस प्रकार से इसको ट्रीट करना चाहिए, कब डॉक्टर के अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए, सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रयागराज के प्रख्यात पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी जी को। डॉक्टर अंबुज, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जब कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके साथ पूरा घर परेशान हो जाता है। बहुत संक्षेप में बताएं कि ये डायरिया है क्या।
2: डायरिया का अर्थ है लूज स्टूल, जिसको बोलते हैं लैटेंट, पतला होना, कई बार होना, बच्चे के कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है एंड सुस्त पड़ने लगता है, और इसके साथ बच्चे को वॉमिटिंग भी मिल सकती है हमें, और इसी को हम लोग डायरिया से परिभाषित करते हैं। अगर बच्चे की लैटेंट में परिवर्तन फ्रिक्वेंसी में और उसकी कंसिस्टेंसी में अगर हो रहा है बराबर से तो उसको हम डायरिया की श्रेणी में रखते हैं।
1: कारण क्या होते हैं इसके?
2: कारण बेसिकली दूषित खाने और पानी से होता है डायरिया मोस्ट कॉमन, और स्पेशली एक साल के नीचे के बच्चों में रोटा वायरस डायरिया बहुत ही कॉमन है, वायरल डायरिया बोलते हैं, और बैक्टीरियल डायरिया भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जो हम गंदा खाना, गंदा पानी, अगर सही से खाने को उबाला नहीं गया है, प्रॉपर बासी खाना खाने से, इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए।
1: कोई अभिभावक ये कैसे तय करे कि अब उसके बच्चे को डायरिया हो गया है, क्योंकि कई बार अमूमन पतली लैट्रिन या पतला मल बच्चों को होता है, ये कब वो तय करे कि अब हमको इसको चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, ये डायरिया हो सकता है, लक्षण क्या होते हैं?
2: लक्षण देखिए यही है कि बच्चे को अगर लैट्रिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जो नॉर्मल से 2-3-4 स्टूल होते हैं बच्चों के, अगर कंसिस्टेंसी ठीक है, मतलब उसकी मात्रा, उसकी वो सब चीज़ें ठीक हैं, तो आप इसको डायरिया की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर उसकी वाटरी लेवल डायरिया हो रहा है एंड कंसिस्टेंसी एकदम लूज है, बच्चा कई बार जा रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग के साथ है, बच्चा खाना पीना कम कर दिया है, तो उसको समझिए कि डायरिया

0: का है और उसको तुरंत चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता है और जिससे आपके बच्चे को सुरक्षा मिल सके।
1: कितना गंभीर हो सकता है ये?
0: गंभीरता के लक्षण आपको पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चे का पेशाब रुक जाना। अगर बच्चा 4, 6, 8 घंटे से पेशाब नहीं कर रहा है तो समझिए कि डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और बच्चा मुंह से कुछ नहीं ले पा रहा है तो ये भी एक लक्षण है कि ये सीवियर डायरिया के रूप में जा रहा है। एंड अगर बच्चा हर चीज़ वॉमिटिंग कर दे रहा है, कुछ भी ओरल इंटेक नहीं ले पा रहा है और सुस्त पड़ रहा है, बच्चे की एक्टिविटी, हाथ पैर का मूवमेंट, बच्चे का जो चेहरा है सुस्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये सीवियर डायरिया के रूप में जा रहा है और तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, हो सकता है बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करके ड्रिप की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में घर पे रह के इलाज करना संभव नहीं हो पाता है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें।
1: ये स्थिति कब आती है?
0: ये स्थिति तब आती है जब अगर शुरुआत से बच्चे को डायरिया में अगर ध्यान नहीं दिया गया है, ORS का घोल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चे को समय से नहीं दिया गया हो, और जो परहेज़ हैं, जो सावधानियां हैं, साफ़ सफाई, ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया, हैंड वॉशिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, धीरे धीरे ये डायरिया बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर समय रहते अगर इलाज शुरू हो जाए तो आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर पे भी मैनेज किया जा सकता है अगर सही से लक्षण को पहचाना जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए और उसकी सीरियसनेस को समझा जाए।
1: इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके टीके सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, क्या डायरिया का भी कोई टीका है?
0: जी बिल्कुल, डायरिया का टीका इस समय सरकार का पूरा प्रयास है कि स्पेशली 1 साल के नीचे के बच्चों को सीवियर डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चों में पानी का स्टोर कम होता है, इनका थ्रस्ट, एक्टिविटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो ये सीवियर डायरिया में इनको बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 साल के नीचे के बच्चों के दस्त के रोकथाम के लिए आपके पास रोटावायरस टीका उपलब्ध होता है जो शुरू के 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे दिया जाता है, वो सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाता है आपके टीकाकरण केंद्र पे, तो उसको अवश्य उसके बारे में बात करें, उसके लगवाने का प्रयास करें।
1: क्या कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब प्रोन टू डायरिया होते हैं, जिनको अधिक संभावना होती है डायरिया होने की, जैसे प्री मेच्योर बेबीज जो होते हैं या कुछ इस तरह के?
0: जी बिल्कुल, प्री मेच्योर बेबीज़ की इम्यूनिटी बहुत लो होती है तो उसमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट कॉमन हम लोग के यहाँ जो प्रॉब्लम आती है हाइजीन का बहुत इश्यूज आता है, बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, बॉटल की हाइजीन का अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है, हैंड वॉशिंग पे ध्यान नहीं दिया, दूध काफ़ी दिन से पड़ा रह गया बॉटल में और आपने ध्यान नहीं दिया, दूध का बॉटल का डिब्बा ढक्कन बंद हो गया तो अब पता नहीं चलता है दूध कैसा है। हम अपने लिए तो ध्यान रखते हैं कि हमें दूध अच्छे से पीना, लेकिन हम बच्चे के उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम चाहते नहीं हैं लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर अलर्ट रहेंगे, नॉलेज रहेगा, जिसके बारे में जानकारी रहेगी तो ही आप उसको बचाव कर पाएंगे। तो प्री टर्म बच्चे या प्री मेच्योर बच्चों के लिए तो स्पेशल ध्यान देना होता है कि उनकी हाइजीन सबसे महत्वपूर्ण है, उससे बचाव करें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। बातचीत का विषय था बच्चों में डायरिया, कारण, लक्षण और उपचार। इसी के साथ आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:51 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट सुनिएगा सुबह 7:30 बजे, संसद समीक्षा सुनवाएंगे रात 8 बजे, चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे, और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनिएगा रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनवाएंगे रोज की तरह सुबह 9:30 बजे, ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: का बांसुरी वादन सुनिएगा सुबह 7:45 पर और दिन में 12:15। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में उमा बनर्जी के स्वर में भजनों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 10:30। स्वर होंगे विकास चंद्र पांडे, सूर्य प्रकाश पटेल और चंद्र प्रकाश पाठक के। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11:00। किस्सा गोई कहानीकार यशपाल पर आधारित इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिएगा दिन में 11:30। अपनी फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। महिलाएं अपना कार्यक्रम हेलो पनघट सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत आज लाइव फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर अमिता यादव श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। विषय होगा महिलाओं के अंडाशय में गांठ व उनसे जुड़े अन्य रोग। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 2:30। और युवा साथी अपना कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे शाम 5:15। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाली आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज के केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके 10 वर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्र न्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: राज्यसभायां 26,2000 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं वंदे मातरम् इत्यस्मै

श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया

0: राष्ट्रगीतायापि राष्ट्रगानेन समं वैधानिकसुरक्षा प्रधानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
1: राष्ट्रीय की अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः

0: जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गंगाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार गोमुख गंगोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापक प्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर उषा मंगेशकर का था और संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है फिल्म पुकार से। आवाज लता मंगेशकर और साथियों की है।

अभी आपने दो आंखें बारह हाथ से ये भजन सुना। आवाज थी लता मंगेशकर और साथियों की, रचना पंडित भरतव्यास की थी और संगीत वसंत देसाई का। इसी के साथ फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया।
1: विधेयक के तहत लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन का दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: इस बीच राज्यसभा ने भी कल राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना

0: या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय हित अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर उनके जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
2: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों में जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
3: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है। मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे सुना लेगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इस दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए यह व्यवस्था की गई है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वहां विशेष व्यवस्था की गई है।
4: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारे तैयार की गई है उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ORS वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी। और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, स्नान सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
0: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए NCRTC ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में प्रदेश के गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर की सफलता पर

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की यह ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में शारदा, जबकि बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बदायूं जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तक टीम इंडिया दुनिया को एक जबरदस्त संदेश दे रही है।
2: भारोत्तोलन में 2 दिन पहले तक हर दिन पदक आ रहे थे। भारतीय झोली भरने के काम का वजन भी उन्होंने ही उठा रखा था। हालांकि पिछले बर्मिंघम खेलों के 3 स्वर्ण सहित 10 पदकों की बराबरी तो इस बार नहीं हो पाएगी, लेकिन अब पदकों की जिम्मेदारी मुक्केबाजों ने उठा ली है। एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड दोनों में ही अब भारतीय मजबूत दावेदारी ठोकने में सक्षम दिख रहे हैं, तो तैराकी और बोल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिशें जारी हैं। और पैरा खिलाड़ियों के जज्बे को तो सलाम है हमेशा ही। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का 7वां दिन और सारे विवरण के साथ उपस्थित हैं हम। भारत के बेस्ट लॉन्ग जंपर शिशंकर मुरली की कहानी साहस, संकल्प और इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। 1.5 साल पहले जिसका करियर खत्म होने के कगार पे था, वो 74 देशों के खेल मेले में अपनी स्पर्धा में भारत के लिए अपना लगातार 2रा रजत पदक ले आया 8.09 मीटर की कूद के साथ। अपने दूसरे प्रयास में ही उन्होंने ये दूरी नापी। इसके बाद के 2 प्रयास फाउल हो गए और अंतिम प्रयास में स्वर्ण पदक पाने के लिए उन्हें कम से कम 8.15 मीटर की दूरी पार करनी थी, लेकिन उसे वो नहीं कर सके। अपनी दौड़ से पहले अपने खास अंदाज में खुद में जोश भरने के लिए उन्होंने समर्थकों को इशारा किया ताली बजाने का और कूद की शुरुआत की। केरल के शिशंकर के पिता एस मुरली राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं और उनके कोच हैं। उनकी हर चीज का वो पूरे समर्पण के साथ ध्यान रखते हैं।
3: Actually, always I am the coach and father. We talk about sports only. Whenever we meet, always we plan meet.
2: हरियाणा में जन्मी मनप्रीत कौर का खेल जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 5 साल तक प्रतिबंध झेलने के बाद वो सम्मान वापस कमाने के लिए कृत संकल्प होकर फील्ड में आई और बहुत कुछ हासिल कर लिया। ग्लासगो में भी देश के लिए मेडल पाने के बिल्कुल करीब तक पहुंच गईं। 5वें प्रयास में 17.49 मीटर फेंका, लेकिन 4थे स्थान पर रह गईं। पुरुषों के शॉर्ट पट में तेजिंदर सिंह तूर का कहना ही क्या। 2 बार के एशियाई चैंपियन तूर ने आसानी के साथ 20 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क पार कर लिया। देश में एथलेटिक्स के बढ़ते स्वरूप पर उनका कहना था।
4: नीरज ने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, तब से हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं भी सब अपने अपने इवेंट में बेस्ट कर मतलब कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट करें वर्ल्ड लेवल पर। मुझे लगता है आने वाले सालों में अच्छा करेंगे।
2: तो उनके साथ ही समरदीप सिंह गिल तूर पाजी की छाया से निकलकर अपना स्थान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 19.95 मीटर के साथ वे भी क्वालिफाई कर गए।
5: senior of mine. He is a very experienced player. I respect him that way.
2: अनिमेश कुजूर 200 मीटर में कुल मिलाकर सातवें स्थान पर रहे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी भी सातवें और

0: 8 में बेस्ट टाइम निकालकर क्वालिफाई करने में सफल रहे। पारुल चौधरी ने पिछले एशियाई खेलों में 2 दिन में 2 पदक जीते थे, 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर में। 3000 मीटर स्टीपल चेस में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ये दिन उनका नहीं था। वो 5वें स्थान पर रहीं 9:26.75 के साथ।
1: The stunning 1-2 finish marked a watershed moment in Indian para-athletics history, etching Dilip Mahadu Gavit and Mohammad Basil into the record books as they swept the podium on the Grand Commonwealth Games stage. Dilip's historic gold was secured with a blistering games record time of 10.71 seconds, a milestone achieved by exploding off the blocks and maintaining a relentless lead to rewrite the competition's record books. By turning the sprint track into a showcase of absolute dominance, capped by that new standard, the duo not only elevated India's standing in international short distance para sports but also delivered a powerful statement of intent for the nation's rising sprinting pedigree on the global map. Dilip Mahadu Gavit and Mohammad Basil delivered a breathtaking 1-2 finish for India in the T47 100 meter finals at the Commonwealth Games, with Gavit surging over the final 30 meters to secure the gold medal in a games record time of 10.71 seconds, while Basil stormed home in 10.83 seconds to claim a brilliant silver ahead of England's Kevin Santos. Dilip Mahadu Gavit, a name who has etched himself in the record books of history. In men's discus throw F42-44, F61-64, Devendra Kumar and Sagar Thayat represented India in para-athletics finals. Sagar Thayat finished in 6th position with a top effort of 46.35 meters, while Devendra Kumar was placed close behind, recording a throw of 48.20 meters.
0: भारतीय बॉक्सिंग के लिए ग्लासगो 2026 का 7वां दिन एक कभी न भूलने वाली उपलब्धि लेकर आया। 6 मुक्केबाज विभिन्न भार वर्गों में रिंग में उतरे और सभी 6ों ने जीत हासिल करके पदक पक्के कर लिए। यकीनन एक अविस्मरणीय दिन जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। शुरुआत की भिवानी की मुक्केबाजी फैक्ट्री की एक और पौज साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में। साक्षी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की काइटलिन फ्रेयर्स को ये एहसास करा दिया कि क्यों उन्हें जायंट किलर कहा जाता है। एक तरफा बाउट रही 5-0 से साक्षी सेमीफाइनल में। दूसरी बाउट में थी राजस्थान से आने वाली पहली इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी। न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से कांटे की फाइट हुई। दूसरे राउंड में अरुंधति ने बढ़िया प्रहार किए और विपक्षी ने एक पेनल्टी भी खाई। निर्णय एकमत नहीं रहा और 3-1 से अरुंधति के पक्ष में गया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं मेरी जीत को मेरे छोटे भाई को डेडिकेट करना चाहूंगी। और आज आसान तो नहीं था, बट अच्छा रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आए तो इसीलिए है कि गोल्ड लेना है, ये तो बस एक सीढ़ी थी।
0: और अब बारी थी लड़कों की। भिवानी के ही सचिन सिवाच के सामने बोत्सवाना के ट्रेजर मॉर्गी थे। वो कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सके। तीनों राउंड में सचिन के मुक्के ही मुक्के लगातार दिखते रहे रिंग में और 5-0 से एक और निर्णय भारत के पक्ष में। तो अब उत्साहित अंकुश पर भला कौन अंकुश लगाता। सेशल्स के जेड मिकॉक तो पूरी कोशिश करके भी नहीं लगा सके। अंकुश के मुक्कों के आगे बेबस हो गए और सर्वसम्मति से एक और जीत 5-0 के साथ। नब्बे किलो में नरेंद्र बेरवाल भी हरियाणा से ही हैं और उन्होंने हैवीवेट वर्ग में भी भारतीय परचम फहरा दिया। समोआ के माइकल सेको की कड़ी चुनौती थी उनके सामने, लेकिन आखिरकार वो इसको पार करने में सफल रहे और 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से जीत गए। पिछले खेलों की कांस्य पदकधारी जैस्मिन लंबोरिया लगातार दूसरे खेलों में सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड की एलिज क्लीन को एक बेहद कड़े मुकाबले में उन्होंने मात दी। बॉक्सिंग में अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन 2022 बर्मिंघम में रहा है। 3 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक। पदकों के मामले में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि 10 पदक पक्के हो गए हैं। और इस उपलब्धि पर ग्लासगो में मौजूद बॉक्सिंग के राष्ट्रीय कोच सीए कुटप्पा ने आकाशवाणी को ये खास संदेश भेजा।
3: Narendra, who put up a strong performance against the 120 kg boxer. We still have 2 more steps to reach the gold medal, and the entire team is fully prepared and determined to achieve that goal. A special thanks to all the Indian team members, camp coaches, and supporting staff. This performance is

0: Canada is at number 2 and England at number 3. India with 3 gold, 9 silver and 3 bronze is placed at number 8.
1: आज की रिपोर्ट बस यहीं तक। संपादक स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और साथ ही अपनी साथी एंकर साक्षी मंडवाल के साथ मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा। कल इसी समय फिर मिलना मत भूलिएगा। नमस्कार।
2: The Commonwealth Games.
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग ललित में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनिंदु चटर्जी और बांसुरी पर हैं रूपक कुलकर्णी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग ललित में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिंदु चटर्जी और बांसुरी पर संगत कर रहे थे रूपक कुलकर्णी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा

0: ललित में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिंदु चटर्जी और बांसुरी पर संगत कर रहे थे रूपक कुलकर्णी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
6: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को

0: राष्ट्रीयगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गयी। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवाड़ी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता

0: और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाठी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुरे अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के कयाम की तजवीज है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइशों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार करार दिए गए अफराद की इमलाक जब्ती जैसे सख्त इल्तजामात शामिल हैं। यह कानून इस बात को लाजमी करार देता है कि हर रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करे। अमले, शिकायत और पेंशन के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान ज़ेरिंग की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी ताज़ीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी ताज़ीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवजा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन की तरह कानूनी तहफ़ हासिल हो जाएगा। इस मुजवजा कानून के जरिए कौमी ताज़ीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां ज़िमनी चुनाव जरूरी हो गया था। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज पहुंच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की 164 पोलिंग स्टेशनों के सभी 422 पोलिंग बूथ्स पर पुरम तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 3,79,616 वोटर्स उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। गुजरात की मांजलपुर असेंबली हलके के लिए बीजेपी ने सतीश पटेल को, जबकि कांग्रेस ने भीका भाई रबारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी के रुकन असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के सबब ज़िमनी चुनाव जरूरी हो गया था। इंतखाबी कमीशन ने 100% वेबकास्टिंग, पोलिंग मराकज के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने के काउंटर्स और ऑनलाइन जाब्ते अमल से मुतालिक शिकायतों के लिए सी विजिल सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को नाअहल करार दिए जाने के बाद दतिया सीट खाली हो गई थी। दतिया असेंबली हलके से चुनाव के लिए सभी 291 पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी इकदाम किए गए हैं और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की वेबकास्टिंग के जरिए

0: निगरानी की जा रही है। इस हलके से कुल 2,20,410 राय दहिंदगान वोट डालने के मजाज हैं। आजादाना और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने की गरज से बड़ी तादाद में मरकजी और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय में पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ 96 लाख से ज्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं। काबीना ने रियासत के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और तिजारती वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कायम करने का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30,17,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहरे अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल की अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनअती अंजुमनों के साथ मीटिंग की जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मसाबिका आरई को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निज़ाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नज़रिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तरा स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी MSMEs और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें JRD टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मियार इख्तरा और मुकाबला जाती सलाहियत के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मुकाम हासिल हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज़ कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला बना हुआ है जहाँ हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वह नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है जहां जिले के 5 ब्लॉक्स में 322 गांव सैलाब के पानी में डूब गए हैं। पड़ोसी जिले जाजपुर में लबरेज हो चुकी बैतरानी और कानी नदियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद तौर से मुतासिर किया है जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। महानदी के बलाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सतह आब में इजाफा हो रहा है जिससे दरमियानी दर्जे के सैलाब और नदी के तास में पानी भर जाने का खदशा है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने नौपाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि दीगर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नबरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

0: गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: शिवालिक केरालम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को केरालम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्मिथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खत्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हस्ब मामूल आमोदरफ्त, उनकी आसानी और तहफ्फुज के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकाम पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, CCTV नेटवर्क और जदीद मरबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में ट्रैफिक को मुंतकिल करने से मुतालिक इंतजाम को नाफिज किया गया है, ताकि कांवड़ियों और दीगर लोगों के बहिफाजत और खुश असलूबी से आने जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर ट्रैफिक मुंतकिल किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर NCR में मुसाफिरों की सहूलियत के मद्देनजर NCRTC ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले अकीदतमंदों के लिए रेलवे ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। अयोध्या में आला अफसरों ने राम की पैड़ी और नया घाट इलाके का मुआयना किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं की सहूलियत और हिफाजत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिनमें जिगजैग की छाया, ग्लूकोज वाटर और ORS तकसीम किए जाएंगे। अकीदतमंदों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। ये नशावर अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्ते तवील एक जन भागीदारी मुहिम है। भारत ने दौलत मुश्तरक खेलों में पैरा एथलेटिक्स में एक तारीख रकम की है और मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल में दिलीप गावित ने सोने का तमगा और मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा जीता है। गावित ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकेंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि वासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
4: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के CBI के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिल सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तिजाम है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुहिरा अहमर के बहरान और आलमी

0: सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार प्रयागराज, नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आज 30 जुलाई है और आज का दिन हमें दो बहुत जरूरी बातें याद दिलाता है। एक तरफ दोस्ती का जश्न तो दूसरी तरफ इंसानियत की रक्षा का संकल्प। आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस भी है और मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस भी।

तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्ती से। दोस्त, ये शब्द सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। यूनाइटेड नेशन ने सन 2011 में 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे घोषित किया। मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया में शांति, समझ और एकता को बढ़ावा मिले, और इसके लिए दोस्ती से बेहतर जरिया भला क्या होगा। कहते हैं ना, दोस्ती न रंग देखती है, न धर्म, न दौलत, दोस्ती तो बस दिल देखती है। सोचिए, स्कूल की वो बेंच, कॉलेज की कैंटीन, ऑफिस की टी ब्रेक, सब दोस्तों की वजह से ही तो यादगार बनी। मुश्किल में जो बिना पूछे साथ खड़ा हो जाए, खुशी में जो सबसे पहले ताली बजाए, वही दोस्त है। एक बार एक लड़के ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, बस एक सच्चा दोस्त नहीं है। तो दूसरे ने जवाब दिया, तुम दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो। आज के दिन 3 काम जरूर कीजिए। अपने सबसे पुराने दोस्त को फोन कीजिए, संभव हो तो साथ में बैठकर मिलिए जुलिए बातें कीजिए, किसी एक नए इंसान से दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, और सोशल मीडिया पर नफरत नहीं मोहब्बत फैलाइए, क्योंकि एक दोस्त पूरे समाज को जोड़ सकता है।

दोस्ती हमें जोड़ती है और एक दोस्त पूरे समाज को जोड़ सकता है, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानों को तोड़ देते हैं। इसीलिए आज का दूसरा अहम दिन है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में मनाने का फैसला लिया। मकसद उन लाखों लोगों की आवाज बनना था जो जबरदस्ती, धोखे या लालच में फंसकर तस्करी का शिकार होते हैं। मानव तस्करी आखिर है क्या? यह सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, यह तब होता है जब किसी को नौकरी, शादी या अच्छी जिंदगी का झांसा देकर फंसाया जाता है। बच्चों, महिलाओं और गरीब लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार हर साल लाखों लोग इसके शिकार होते हैं और सुख दुख की बात तो यह है कि इसमें से ज्यादातर शोषण के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ साल पहले इस दिन की थीम थी पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी, मतलब हमें उन लोगों को सुनना होगा जो बचकर आए हैं। उनकी कहानी ही सबसे बड़ा सबूत है। इसके लिए हम आम नागरिक, आप और हम क्या कर सकते हैं? जरूरी है कि हम जागरूक बने। अगर कोई बहुत अच्छी नौकरी का लालच दे तो बार बार सोचें। बोले अगर आपको आसपास कुछ संदिग्ध लगे, नाबालिग का अचानक गायब होना, जबरदस्ती काम करवाना, तो तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर हमें कॉल करनी चाहिए। जो बचकर आए हैं उन्हें दोषी नहीं बल्कि हीरो मानना चाहिए, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। याद रखिए, तस्करी सिर्फ अपराध नहीं है, ये इंसानियत पर हमला है और इस हमले को रोकने के लिए हर एक नागरिक एक सिपाही है। दोस्तों, गौर कीजिए, दोस्ती हमें जोड़ती है और तस्करी हमें तोड़ती है। एक दिन हमें याद दिलाता है रिश्ते निभाओ, दूसरा दिन याद दिलाता है रिश्तों की रक्षा करो। अगर हर दोस्त अपने दूसरे दोस्त का ख्याल रखे, अगर हर इंसान दूसरे को इंसान समझे, तो ना कोई अकेला होगा और ना ही कोई असहाय होगा। आज अपने दोस्तों को गले लगाइए और साथ में ये प्रण भी लीजिए कि हम अपने समाज को सुरक्षित बनाएंगे। तो आज 30 जुलाई को हम संकल्प लेते हैं कि दोस्ती को मजबूत करेंगे और मानवता के खिलाफ होने वाले हर अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्योंकि दोस्ती इंसान के लिए वरदान है और तस्करी एक अभिशाप। तो दोस्ती का जश्न मनाइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी नैतिकता को, एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को जरूर याद रखिए।

नमस्कार प्रयागराज के आज के अंक में मैं था आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया अभयकांत तिवारी ने।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा साया से ये गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन साहब का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गाना सुनने से पहले एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जुलाई 2026 यानी आज प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के अंडाशय में गांठ की समस्या व उससे जुड़े अन्य रोग विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता यादव। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 0532-2970-462 और दूसरा नंबर है 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म बागी से। आवाजें हैं मीत ब्रदर्स मोनाली ठाकुर और अमाल मलिक की। रचना कुमार की है, संगीत मीत ब्रदर्स का।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए महोबा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिय का।
3: कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने महोबा तहसील के पचपहरा गांव पहुंचकर अमर सपूत जगदीश यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

0: इस मौके पर मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर सपूतों के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग पूर्व सैनिकों के द्वारा सुनाए गए। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष कैप्टन देवीदीन यादव ने बताया कि 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में देश के 527 अमर सपूत शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में वीरभूमि से बालेंद्र सिंह और जगदीश यादव ने शहादत दी। वहीं गंजगांव के बलदानी बालेंद्र के बड़े भाई रणविजय सिंह ने कहा कि भाई ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत महोबा जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव एवं स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाना इन बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने छात्राओं को औषधीय पौधों के महत्व, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा नियमित दिनचर्या अपनाने के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनैना ने कहा कि जागरूकता ही संचारी रोगों की रोकथाम का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि लोग समय रहते सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें तो डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ने के कारण यूपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जल स्तर अधिकतम भंडारण क्षमता तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सिंचाई विभाग ने एहतियातन बांध के 2 फाटक करीब 1.5 फीट तक खोलकर 4100 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा। पानी छोड़े जाने के बाद महोबा और झांसी जनपद के नदी के किनारे बसे 15 गाँव में काशीपुरा, धवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगारा घाट, सिंहड़ी और सिलैया गाँव के साथ साथ झांसी जनपद के लहचूरा, बरौड़ा, असपुरा, झारखंड और सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्राम प्रधानों, लेखपालों तथा संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सचेत करने और नदी के तटों पर अनावश्यक आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वे नदी में स्नान, मवेशियों को पानी पिलाने तथा अन्य किसी कार्य के लिए नदी के निकट न जाएं तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अभर अभियंता रामाश्री ने बताया कि लहचूरा बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर तथा अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर निर्धारित है। लहचूरा बांध पूर्ण क्षमता से भर गया है। अर्जुन नहर के जरिए बांध से करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जो अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध में पहुंच रहा है। इन बांधों का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने धसान नदी के किनारे बसे गाँव में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है। 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, डॉग स्क्वाड, कंप्यूटर एवं सबोटाज चेक प्रतियोगिता में महोबा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में महोबा टीम के निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेशेवर कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक अपने नाम किए। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि प्रयागराज जोन में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने महोबा पुलिस के लिए गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता पूरे महोबा पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। महोबा जिले में 900 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यापक कार्य कराए गए। जिले के 416 गांव में से 343 गांवों को इस योजना से जोड़ा गया। योजना के सभी ओवरहेड जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गांवों में 3213 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले 3206 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। घरेलू नल कनेक्शन का कार्य 99.83% पूरा हो चुका है जबकि सड़क मरम्मत का कार्य भी अधिकांश गांव में पूरा किया जा चुका है। स्थानीय निवासी सुमन देवी बताती हैं कि वे कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं, लेकिन आज घरों में पानी साफ आ रहा है। बम्हौरी काजी निवासी मोतीलाल कुशवाहा बताते हैं कि वे पहले कुओं से पानी भरते थे, पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन योजना से अब उनके परिवार में स्वच्छ पानी आता है।
1: पहले हम लोग कुआं से पानी भरते थे, बड़ी परेशानी होती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत हम लोग टोंटी वाले पानी से पानी भरते हैं, पानी रोज आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दर्द को समझा और हमारी हालात बदल गई, पानी मिल रहा है।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है जीएन चौबे का।
3: 6 जुलाई को गोरखपुर के नगरीय और व्यवसाय

0: विकास को और ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर नगर निगम के 80 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बांड लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नगर निगम इस बांड से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में करेगा। यह अत्याधुनिक और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकल परिसर में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा म्युनिसिपल बांड के क्रियान्वयन से जुड़े 80 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम जलकल परिसर में एक अत्याधुनिक और विशाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स बिल्डर्स और ट्रस्टियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से सुनिश्चित की गई थी, जिसके बाद इस लोक कल्याणकारी और राजस्व जनित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट बांस स्थान फोर लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला कांग्रेस और सपा ने भारतीय मान बिंदियों पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब उसने सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती है, इससे आम जन को सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
1: ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, ये सब चुनने का परिणाम क्या है, विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है।
0: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया तब भी इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की विकास परक उपलब्धियों को नई ऊंचाई देने के लिए आयोजित जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इंसेफ्लाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नियति बन चुकी थी। इसकी चपेट में आकर हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर तब की सरकारों के कान में जू तक नहीं रेंगता था। सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहती थीं। उन्होंने जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों और नौजवानों के साथ कांग्रेस और सपा ने जितना शोषण और अत्याचार किया उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिले में श्रावण मास को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। भगवान शिव के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। आगामी 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी, जिसमें भगवान शिव के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई को लेकर तैयारी की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ होगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देश गीत।

0: अभी आप संवेद स्वरों में ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर

0: लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं।
1: सामईन आदाब, बीते कई रोज से दिल में एक अजब सी बेचैनी ने घर कर लिया है। दरअसल मुझे तलाश है एक 10-11 साल के मासूम से बच्चे की। क्या आप मेरी इस तलाश में मदद कर सकते हैं? शुक्रिया। तो चलिए आज हम आपको अपने साथ माजी के सन 1924 के दौर में लिए चलते हैं। तकसीम हिंद से कबल ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर लिए चलते हैं, जो दौरे हाजिर में शहर लाहौर के नाम से मशहूर है। तसव्वुर कीजिए उस छोटे से गांव के बारे में, जहां पंजाब की मिट्टी फजाओं में अटखेलियां किया करती थी। शहर लाहौर के पुरकैफ नजारों, बुर्जों, मीनारों और बेशुमार यादगारों से गुजरते हुए आपको भाटी दरवाजा मिलेगा, जिसमें दाखिल होने के बाद बाजार की रौनकों की सैर करते हुए किसी दोशीजा की नाजुक कमर सी पतली तंग गलियों में दाखिल हो जाइएगा। गौर कीजिएगा, इन गलियों के दोनों तरफ वक्त की झुर्रियां पड़े बोसीदा खस्ता हाल मकानों पर, जैसे वो अपनी जवानी की दास्तान सुनाते सुनाते बस अभी खुल के बिखर जाएंगे। लेकिन आपको एक लम्हा भी यहाँ पर रुकना नहीं है। आपको तो तलाश है एक तंग गली के उस नुक्कड़ की, जहाँ नीली रोशनाई से लिखा एक बोर्ड मिलेगा, जो महल्ला चौमाला की शिनाख्त का इसरार करता हुआ मालूम होगा। इन्हीं गलियों में कहीं आपको एक तारा लिए एक फकीर दुनिया के झमेलों से बेखबर अपनी ही धुन में गोता लगाता हुआ कभी इस दर तो कभी उस दर गाता गुनगुनाता मिलेगा। ठीक उसी फकीर के पीछे आपको एक 10-11 साल का मासूम सा फरिश्ता सिफत बच्चा भी नजर आएगा, जो बड़ी ही हैरतों से उस फकीर की धुन की ताने बानों को अपने जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा था।
2: खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार।
1: पहचाना आपने, यही तो है सरदार गली में रहने वाला 11 साल का वो मासूम बच्चा, जिसे आज आप और हम मोहम्मद रफी के नाम से जानते हैं, जिसने इन्हीं गलियों में बचपन से लड़कपन का सुरीला सफर तय किया। यहीं पर कैफो किंग मोहम्मद रफी ने अपनी मौसीकी से गांव की मिट्टी की मोहब्बत से वो चराग रोशन किए, जो ता कयामत तक मौसीकी के आसमान में सूरज की तरह दमकते रहेंगे।

0: तो चलिए आज हम आपको मौसीकी के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब के बचपन से लेकर शोहरत के उरूज तक की जिंदगी के कुछ औराक पलटते हुए थोड़ा सा उनको और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। रफ़ी साहब के वालिद हाजी अली मोहम्मद एक जमींदार थे जिनके नज़दीक मौसीकी महज एक शौक थी, मगर वो इस बात से लाइल्म थे कि रफ़ी साहब के सीने में ये शौक दरअसल एक शोला बन के भड़क रहा था। 13 बरस की उम्र में आपका खानदान लाहौर चला गया, जहाँ रफ़ी साहब ने उस्ताद अब्दुल वहीद खान से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। इस तरह उनकी आवाज ने परवाज के पर तोले। कहते हैं महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में जनाब कुंदरलाल सहगल और मलिकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा को बतौर सिंगर स्टेज पर परफॉर्म करना था, लेकिन तभी स्टेज पर बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल साहब वक्त पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में श्याम सुंदर नाम के एक शख्स ने, जो कि रफ़ी साहब के बड़े भाई के जानने वाले थे, तजवीज़ रखी कि जब तक सहगल साहब नहीं आ रहे तब तक इस लड़के से कुछ गवा लिया जाए, और इस तरह रफ़ी साहब को स्टेज पर अपना हुनर आजमाने का एक नायाब मौका मैसर हुआ। बस फिर क्या था, एक सूटकेस में अपने साजो सामान के साथ अपने चंद ख्वाब समेट कर अपनी आवाज के सहर से जमाने भर को दीवाना बनाने के लिए निकल पड़े मोहम्मद रफ़ी शहर मुंबई की तरफ, जहां तकदीर रफ़ी साहब की जिंदगी का एक नया बाब लिखने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि रफ़ी साहब को अपना मकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। रफ़ी साहब ने अपना पहला नगमा फिल्म गुल बलोच के लिए 1944 में गाया था। बम्बई आने के बाद रफ़ी साहब की मुलाकात मौसीकी के सरताज नौशाद साहब से हुई। उन्होंने पहले आप नाम की फिल्म में रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का रफ़ी साहब के लिए इजहार जज्बात।
1: गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है।
0: नौशाद साहब के साथ रफ़ी साहब की जोड़ी खूब जमी। 1946 में अनमोल खड़ी, फिर शहीद, मेला, दुलारी जैसी फिल्मों में रफ़ी साहब ने नौशाद अली की तर्ज पर कई हिट नगमे गा के मकबूलियत हासिल की। लेकिन सही मायनों में 1951 में जब नौशाद साहब ने फिल्म बैजू बावरा के गाने रफ़ी साहब से गवाए, तो इन नगमों ने हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में रफ़ी साहब की पहचान को और मजबूत कर दिया। नौशाद साहब ने रफ़ी के अंदर के गायक की पिच और रेंज को पहचान लिया था, और फिर जमाने को मिले कुछ अनमोल भजन जिनके अंदर सोज भी है, पुकार भी है और इसरार भी है।

0: की आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान।
1: मौसीकी की दिल आवेज राहों में इस मोहम्मद राही ने 26,000 से ज्यादा नगमात को अपनी आवाज से दिलचाद किया, जो कि एक नाकाबिले तस्खीर रिकॉर्ड है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली के अलावा भी बेशुमार जबानों में उन्होंने अपनी पुरअसर आवाज की नगमगी के तोहफों से पूरी दुनिया को नवाजा। 1965 में म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी से सजी फिल्म जब जब फूल खिले आपको याद होगी, इसका एक गाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना। इस गाने को भला कौन भूल सकता है। इस गाने की शोहरत ने बुलंदियों के आसमान छू लिए। इसके बाद 1966 में फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओ इस कदर मकबूल हुआ कि उन्हें चौथे फिल्म फेयर अवार्ड के एजाज से नवाजा गया। 1968 में शंकर जयकिशन की हिदायत में फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर इसके लिए इस अजीम फनकार को 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यहाँ पर 1968 की फिल्म नील कमल के लिए रफी साहब के गाए एक नगमे का जिक्र भी करना बेहद जरूरी है। कहते हैं रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले ही रफी साहब ने अपनी बेटी की मंगनी की रस्म अदा की थी। इस नगमे को गाते वक्त रफी साहब बाकायदा सिसकियों से रो रहे थे। आलम ये था कि सभी साजिंदों की आंखें भी उनके साथ नम हो उठी।

0: की तरह।
1: इतने साफ और शफाफ तबीयत के इंसान थे रफी साहब। उनकी कामयाबी के डंके तो अभी चारों दिशाओं में गूंज रहे थे। 1977 में फिल्म आई हम किसी से कम नहीं और फिर एक और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग दुनिया वालों को मिला, क्या हुआ तेरा वादा, जिसके लिए एक बार फिर उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। इतनी कामयाबी और शोहरत की बुलंदी के आसमान को छूने वाले मोहम्मद रफी के पांव हमेशा जमीन पर टिके रहे। वो एक सादा दिल, बेहद खुशमिजाज और दरिया दिल इंसान थे। तकसीम हिंद के दौर में भी उन्होंने हिंदुस्तान में रहना ही पसंद किया। कई दफा उन्होंने बिना पैसों के या फिर बहुत ही कम पैसों में फिल्मी गाने भी गाए। एक दफा गानों की रॉयल्टी को लेकर सुरों की मलिका लता मंगेशकर के साथ उनका कुछ अरसे के लिए मन मुटाव हो गया था, जिसकी वजह से कई बरस के लिए इन दोनों की जुगलबंदी सुनने को सिनेमा जगत तरस गया। बाद में अदाकारा नरगिस की कोशिशों से दोनों ने एक बार फिर फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे से शानदार वापसी की। लेकिन रफी साहब की जाती जिंदगी उनके फन की तरह ही सादी और सच्ची मगर पुर असर थी। कहा जाता है कि वो अपने बदाहों से मिलने में भी कभी तकबर नहीं रखते थे। इतनी मसरूफियात के बावजूद वो अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकाल लिया करते थे। नगमों के इस बादशाह के दिल में फकीर किसी सादगी और आजिज़ी थी। उनकी मौसीकी वो दरिया थी जिसकी मौजें हर किनारे को छूकर आगे बहती चली गईं। फिर दौर आया 31 जुलाई सन 1980 का, जब मोहम्मद रफी साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनियाए फानी से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। वो हमारे बीच एक ऐसी खला छोड़ गए जिसे आज तक कोई भी मुकम्मल न कर सका। मोहम्मद रफी जैसा बनने की ख्वाहिश ने बॉलीवुड को कई नए और बेहतरीन फनकार अता किए, लेकिन मोहम्मद रफी की जगह कोई न ले सका, उस खला को कोई भी न भर सका।
2: सबसे ज्यादा मैंने रफी साहब के साथ डांस गाए हैं। मैं समझती हूँ कि उनके जाने से हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हानि हुई है और एक संगीत का युग आज खत्म हुआ है।
1: उनकी जिंदगी पर किताबें लिखी गईं, दस्तावेजी फिल्में बनाई गईं, साल दर साल उनके चाहने वालों की तादाद में इजाफा ही देखने को मिला। इस अजीम फनकार के फन के मुरीद आकाशवाणी लखनऊ के अनाउंसर जनाब सुरेंद्र राजेश्वरी आज रफी साहब को कुछ इस तरह याद कर रहे हैं।
3: आकाशवाणी के सुनने वालों को राजेश्वरी का बहुत बहुत आदाब। मेरा आकाशवाणी का सफर 1995 से शुरू हुआ है, तब से मुसलसल आपकी खिदमत कर रहा हूँ और जाहिर सी बात है कि आकाशवाणी

0: उनके गाए नगमे अमर हैं, चाहे वो रोमांटिक सिचुएशन हो या सोज भरी। उनकी गुलकारी में जो अदाकारी थी वो बेजोड़ थी। शम्मी साहब को उनके इंतकाल की जब खबर मिली तो वे एक सदमे में आ गए। किशोर साहब अपने हर शो की शुरुआत में रफी साहब को कुछ यूं याद करते थे।
1: इससे पहले कि मैं अपने गीत आपके सामने पेश करूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब मरहूम वो हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, भाई की तरह थे, तो मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम उनके गीत से मैं शुरू करूं।
0: रफी साहब की तारीफ करना छोटा मुंह और बड़ी बात करने जैसा है, या ठीक उसी तरह जैसे सूरज को कोई चिराग दिखाए। आज हम इस अजीम कुलकार की बरसी पर उनके फन को सलाम करते हुए खुलूस अकीदत पेश करते हैं। छुप गए वो साज़ हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है, अब तो बस आवाज ही आवाज।

0: यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी याची कलाकार हैं उमा बनर्जी। इनके स्वर में लीजिए सुनिए ब्रह्मानंद जी की ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने मीराबाई की ये भक्ति रचना सुनी। हमारी आज की कलाकार थी उमा बनर्जी। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों पर 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले

0: अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट 1 से अधिक क्षमता वाले, जबकि 387 पैनल 2-3 किलोवाट 1 श्रेणी में और 103 पैनल 2 किलोवाट 1 तक की क्षमता वाले हैं। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
2: कावड़ पटरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख घाटों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
3: हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कावड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो।
2: कावड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म सावन आया झूम के इस गाने से, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों ने। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। देव कोहली के बोलों को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने, आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

कार्यक्रम का अगला गाना है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत ए आर रहमान साहब का, फिल्म का नाम ताल।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म चांदनी से ये गाना, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे ने। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है शिव हरि ने।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जुलाई 2026 यानी आज प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के अंडाशय में गांठ की समस्या व उससे जुड़े अन्य रोग विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता यादव। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532297046 और 0532243649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532297046 और दूसरा नंबर है 0532243649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए विकास चंद्र पांडे के स्वर में।

अभी आपने विकास चंद्र पांडे के स्वर में ये दादरा सुना, लीजिए अब सुनिए ये लचारी सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में।

अभी आपने सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में ये कहरवा सुना। हमारे अगले कलाकार हैं चंद्र प्रकाश पाठक, इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये कजरी।

लोकगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर पेश कार्यक्रम एक ही कलाकार। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो हर दौर में नई लगती हैं। कुछ फनकार महज गायक नहीं होते, वो हर एहसास की जबान बन जाते हैं।

जब मोहब्बत को सुर चाहिए होते हैं, जब जुदाई को आवाज़ चाहिए होती है, जब दुआओं को लफ्ज़ चाहिए होते हैं, तब एक नाम दिल की धड़कनों से होकर होठों तक आती है।

0: वो आवाज जिसने हंसी को भिगाया, आंसू को भी सुरों में सजाया।
1: बाकी है बेकार दिन, जीने के है चार दिन।
0: इश्क को भी महकाया और वतन की मिट्टी का एहसास भी हर

आइए आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर सुरों के इस शहजादे को सलाम करें जिनकी गायकी ने न जाने कितनी यादों को अमर कर दिया। एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने होस्ट और दोस्त उज्ज्वल सिन्हा के साथ।

हर बुलंदी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। हर चमकते सितारे के पीछे संघर्ष की एक लंबी रात होती है। साल 1973 में हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम ने संगीत की तालीम अपने पिता अगम कुमार निगम से पाई। महज 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने मंच पर पहली बार गीत गाया और तभी ये एहसास हो गया कि ये बच्चा एक दिन सुरों का सरताज बनेगा। बचपन के मंचों से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफर आसान नहीं था। संघर्ष था, इंतजार था, लेकिन हौसलों का दामन कभी नहीं छूटा। शुरुआत में उन्होंने कई दिग्गज गायकों, विशेषकर महान गायक

सोनू निगम की आवाज में ऐसी मिठास और सादगी थी कि सुनने वाले ठहर जाते थे। फिर आया वो दौर जब उन्होंने एल्बम रफी की यादें के जरिए अपने आदर्श को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद संगीत की दुनिया ने इस नई आवाज को गंभीरता से सुनना शुरू किया, लेकिन असली पहचान तब मिली जब फिल्म बेवफा सनम का एक गीत घर घर गूंज गया।

सोनू निगम ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, पंजाबी और कई अन्य भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

जाने माने प्लेबैक सिंगर सोनू निगम पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ। अगला गाना सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आज प्रसारित होने वाले हेलो सजीव, क्षमा कीजिएगा, सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के अंडाशय में गांठ की समस्या व उससे जुड़े अन्य रोग विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता यादव। आप अपने प्रश्न दोपहर

1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-2423-649। आप अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई फिल्मफेयर पुरस्कार, आईफा पुरस्कार, जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड और अनेक संगीत सम्मानों को सोनू निगम ने अपने नाम किया।

तमगों से नहीं दिलों से पहचान बनती है, हर सुर से जब मोहब्बत की उड़ान बनती है। इनाम तो बस सफर की एक खूबसूरत निशानी है, असली जीत तब होती है जब हर जुबा पर कहानी बनती है।

पुरस्कार झुककर जिनका इस्तकबाल करें। ऐसे फनकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, हर सुर में जिनकी रूह बोलती है वो सोनू निगम कहलाते हैं।

सोनू निगम की गायकी सिर्फ सुरों का सफर नहीं बल्कि जज्बातों की ऐसी दास्तान है जिसने हर पीढ़ी को अपने अंदाज में गुनगुनाना सिखाया। come on, come on, come on। उन्होंने हर गीत को अपनी रूह से सजाया और हर श्रोता के दिल में एक खास जगह बनाई।

इन दुआओं के साथ हम जन्मदिन के इस खास मौके पर सुरों के सम्राट सोनू निगम को हार्दिक बधाइयां देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो सोनू निगम जी। आप यूं ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सुरों से दुनिया को रोशन करते रहें।

आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने आपको जिन फिल्मों के गाने सुनवाए उनके नाम है। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था सोनू निगम और सुनील चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम था मुझसे शादी करोगी। कार्यक्रम का दूसरा गाना जंगल फिल्म से था, सोनू निगम और सुनील चौहान की आवाजों में। तीसरा गीत हमने लिया था बेवफा सनम फिल्म से, जिसे गाया था सोनू निगम ने। एक ही कलाकार कार्यक्रम का चौथा गीत हमने लिया था कांटे फिल्म से, सोनू निगम की आवाज थी इस

और कार्यक्रम का ये जो अंतिम गीत बैकग्राउंड में चल रहा था, हमने लिया था गरम मसाला फिल्म से, जिसे गाया था सोनू निगम और साथियों ने। अब एक ही कलाकार कार्यक्रम को समाप्त करने की अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाज़त दीजिए।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम किस्सा गोई। आज का ये अंक कहानीकार यशपाल पर आधारित है।
2: किस्सा गोई। हर एक दास्तां तुझसे शुरू होती है, हर एक किस्सा तेरे नाम पर तमाम हुआ।
3: दोस्तों, सुल्तान अख्तर साहब के इस खूबसूरत शेर के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर किस्सा गोई की सौगात लेकर। आप सभी को हमारा नमस्कार।
2: दोस्तों, किताबों के सफहों पर उकेरी न जाने कितनी ही कहानियां हमारे दिल के जज्बात की बयानियां बन कभी होठों पर मुस्कुराहटें लाती हैं तो कभी आंखों का पानी बन दिल की अजमी को भिगो जाती हैं।
3: यानी परत दर परत छुपे होते हैं जिनमें ऐसे अकस्माती मोड़ जो कभी नजरों को डगमगा देते हैं तो कभी दिल की धड़कनों को बढ़ाने का सबब बनते हैं।
2: वैसे फिलहाल अभी तो दिल की धड़कनों को बढ़ाने का सबब बनने को बेकरार हैं ये दिलकश गीत जिसकी गुनगुनाहटों में छुपी हुई है कोई दिल फरेब दास्तां।

0: वाह, दिए और बाती के बिंबों के सहारे दिलों की किस्सा गोई करता ये गीत तो मन को छू ही गया।
1: देखिए पसंद किसकी थी
0: ये तो सही बात आपने कही है।
1: तो छू लेगी आज की वो कहानी भी जिसकी बयानी के लिए दिल असल में बेताब है।
0: वैसे दोस्तों हम समझ रहे हैं कि बेताबियां आप सबके भी उरूज पर होंगी, तो चलिए आज हम किस्सा गोई में जिस कहानीकार की कहानी लेकर आए हैं पहले उनसे आप सबको रूबरू करा दे, यानी बातें हिंदी के महान साहित्यकार यशपाल की।
1: दोस्तों हिंदी साहित्य जगत को अपने भावपूर्ण अर्थपरक और सशक्त लेखन से समृद्ध करने वाले सुविख्यात रचनाकार यशपाल यूं तो अपने उपन्यास विधा के लिए चर्चित हैं, लेकिन उनकी रची कहानियां जहनों दिल पर बड़ा गहरा असर डालती हैं।
0: पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावृत, चिंगारी और फूलों का कुर्ता जैसे उनके कहानी संग्रह में छिपे वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य न केवल प्रभावकारी रूप से परिलक्षित होते हैं बल्कि एक नई सोच, नई दिशा की डोर भी हमें थमा जाते हैं।
1: आज हम भी अपने किस्सा गोई के इस अंक के माध्यम से आपसे साझा करेंगे यशपाल जी की एक बेहद मार्मिक कहानी
0: पर्दा।
1: चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी, एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब के जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपए का माहवार का दर्जा।
0: अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे, लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए उन्होंने आंखें मूंद ली।
1: इंशाल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थी। चौधरी इलाहे बख्श डाकखाने में थे, उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे

0: और दो लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठ नचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की टेढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता।
1: जहरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी।
0: तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए।
1: दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफा पाया, जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए।
0: चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या? स्कूल की फीस हर महीने और किताबों कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए।
1: चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्द ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल के मिल में मुंशी गिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था ही, मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें न थी, चौकी पर बैठते खलम दवात का काम था।
0: 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपए था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाई ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे और बाई ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते।
1: इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को भी कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते।
0: चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के।
1: दूसरी लड़की होने को थी तो वीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा के फिक्र करने आया नहीं, वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी।
0: जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटे होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो? घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिलके नौकरी का

0: फायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है, कभी बहुत जरूरत पर ही मेहरबानी करते। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज के घर लौटने की संभावना ना रहती।
1: मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो तो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए।
0: मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ ना था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोरों को ना मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वो चोर जो ठहरा। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ ना रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वो पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक ना रह गया।
1: दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था।
0: कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5ों औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता, पैजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे, गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी ना हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान।
1: रहने की जगह भर देखकर वह रुपए उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे।
0: बबर अली खान का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त ना मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रिड़ी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रिड़ी में बीच बचौवल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी शरण लेनी पड़ी।
1: 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपए कर्ज लिया।

0: के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नई बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम चार घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो हम उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है?
1: चार घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी,
0: चौधरी।
1: पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्सत्त हो गए, हाथ पैर सुन और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेत न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था।
0: पैसा नहीं देने का वास्ता चिपटा है।
1: एक से एक बढ़ती हुई तीन गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था,
0: पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, आम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी तो दो, हम ऐसे ना जाएगा।
1: बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा, खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई। एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया।
0: आम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा, तुम्हारा खाल का क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा।
1: खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वो टकमगा कर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके एक तिहाई अंग ढकने में भी असमर्थ थे।
0: जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गिलानी से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लौट गया।
1: भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वो मर चुकी थी।
0: इस कहानी को सुनते और सुनाते हुए मुझे एक बात लगी।
1: क्या
0: वो ये लगी?

0: अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुसंधान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: अपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल अपने

0: को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विटाली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Rajya Sabha is to take up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, will move the bill this afternoon. When the House met at 11 a.m., the Chairman, C.P. Radhakrishnan, took up 0 hour. The Chairman said he has admitted the notice received from Dr. Jitendra Singh regarding moving the bill. He said the copy of the bill has been circulated to the members so that they can move amendments. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday.
3: For moving the motion of consideration of the public examination, prevention of unfair means, Amendment Bill 2026, as passed by the Lok Sabha. Today in Rajya Sabha, by grant of waiver under Rule 123 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Council of States, that is Rajya Sabha, accordingly a supplementary list of business for today has been issued for taking up this bill for consideration and passing.
2: The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protests over the NEET exam issue. When the House met for the day at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated para-athlete Dilip Gavit for winning a gold medal and Mohammed Basil for clinching the silver medal in the men's 100-meter race at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. On behalf of the House, Mr. Birla congratulated and extended best wishes to all the players and their coaches for enhancing the nation's pride. Later, when the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over alleged police action during students' protest. Opposition MPs were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over the issue. Mr. Birla said the question hour belongs to the members and it is the most important business. The speaker said he had appealed to all MPs both in the House and during the meeting of floor leaders not to disrupt the

संसद समीक्षा रात 8 बजे। चर्चा का विषय है कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर आएंगे 12:30 पर। हेलो पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर महिलाओं में अंडाशय में गांठ व उनसे जुड़े अन्य रोग के विषय में जन सामान्य की समस्याओं की शंकाओं का समाधान करेंगी डॉक्टर अमिता यादव। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5 बजे। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं 5:15 से।

0: पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे इंद्रजीत पटेल, क्षमा कीजिएगा इंद्रजीत यादव और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा किसान चर्चा के प्रतिभागी होंगे इंद्रजीत पटेल और फूलचंद्र। साथ 7:31 पर काव्य कौमुदी में आपको सुनवाएंगे वीरेंद्र तिवारी और हरिश्चंद्र पांडे से उनकी रचनाएं। रात 8:15 पर चित्रपट संगीत और सबरस कार्यक्रम 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। सोनू वर्मा निवासी ग्राम पूरे मग्गू पिपरा ताली थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ सूचित करते हैं कि आंचल वर्मा 2 अप्रैल 2026 दिन में 1 बजे से पीपरताली मग्गू कपूरवा थाना मांधाता से लापता हैं। आंचल वर्मा के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 19 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, इकहरा जिस्म और चेहरा गोल है। आंचल वर्मा के विषय में कोई भी सूचना आप थाना मांधाता प्रतापगढ़ को या इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9238320223। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी पर बजाया राग वृंदावनी सारंग, वादक कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

राग वृंदावनी सारंग में बांसुरी वादन अभी आप सुन रहे थे। वादक कलाकार थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं हम आज के इस कार्यक्रम के साथ, और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु है। जी हाँ, जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई भी नहीं सिखा पाता। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, सबका वक्त आता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दे दो वो कदर नहीं करता। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ, और इस गीत की फरमाइश हमें की है डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। पाटन जिला से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा, पार्थ कश्यप, उमेश और प्रमिला वर्मा। छत्तीसगढ़ से महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और

तुलसी को स्वामी। आप सब जिस गीत को सुनना चाहते हैं उस फिल्म का नाम है वारिस। तो चलिए पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, हमें अक्सर शिकायत होती है कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम में से हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क इतना है हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने कामों को प्राथमिकता देना और बेफिजूल की बातों में वक्त बर्बाद ना करना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे वक्त को और भी कीमती बना सकती हैं। वक्त सिर्फ हमारे करियर या सपनों के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी बहुत अहम है। अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त, वो पल जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, यही तो है जीवन की असली पूंजी। रिश्तों को संवारने में वक्त का हाथ होता है। जो देते हैं अपनों को वक्त, वक्त उनके साथ होता है। जी हाँ, कुछ जिंदगी में लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनसे अगर आप मिलिए तो पंख लगा के वक्त कब उड़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और बस हम यही कहते रह जाते हैं, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। और इसी गाने की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है, चलिए पहले आपको उनके नाम बता देते हैं। ये गाना है फिल्म नीला आकाश से और फरमाइश की है आप सबने। विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता, लिपि गोप और दीपाली गोप, मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, श्रीजी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है नीला आकाश।

किसी शायर ने भी क्या खूब बात कही है, कल की फिक्र में क्यों वक्त गंवाते हो, जो आज है तुम्हारे पास उसे क्यों नहीं पाते हो। जी हाँ, वक्त तो कुछ इसी तरह का होता है, तो अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए और उन्हें पूरा करने में वक्त लगाइए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कभी साथ है तो कभी खिलाफ है, वक्त का भी आदमी जैसा हाल है। जी हाँ, वक्त कभी भी करवट ले सकता है, तो वक्त की बात है जान लो, तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी। तो चलिए, वक्त पर हम और भी बातें करेंगे, पहले सुनते हैं अपने श्रोताओं की पसंद का पाकीज़ा फिल्म का ये गाना, और इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है उनके नाम है प्रयागराज झूसी से खुशी गौड़, छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, हिसार से राजकुमार ढूडी, प्रमोद कुमार और सौरभ ढूडी, जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सुरेश, सोनू, पंकज राजपाल, तन्वी, सोनी, ऋतिक, मोहिनी और बलवीर सिंह, छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो लीजिए सुनिए पाकीज़ा फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, वक्त ही ऐसा है जिसे ना हम खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं और ना ही जमा कर सकते हैं। वक्त तो बस बीतता चला जाता है, लेकिन इस वक्त में हम अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने रिश्तों को सींचते हैं। कभी कभी यूँ भी होता है कि जब हमारे पास खुशियों के पल होते हैं या हम बहुत खुश होते हैं, तो हमें लगता है कि समय रुक जाए। रुक ना पाए तो धीरे धीरे चले, ताकि हम इन पलों में और जी ले। और ऐसे ही पलों को ले आया है हमारे श्रोताओं की पसंद का ये गाना, समय तू धीरे धीरे चल। बहुत ही खूबसूरत गाना है, फिल्म का नाम है कर्म, आवाज़ें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। जी हाँ, किशोर साहब का आज जन्मदिन भी है और आज है 4 अगस्त। तो चलिए हम सुन लेते हैं ये गीत, और हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया है। उनके नाम हैं औरंगाबाद से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी, आनंद और पीयूष कुमार। मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई और सूरज कुमार ढाक से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है

ये था संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मधु कुमार ने।

0: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के अंडाशय में गांठ की समस्या व उससे जुड़े अन्य रोग विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता यादव। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 1 बजे हैं, कुछ ही पदों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में

0: प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर

तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आईएएसवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पार्टी ने कल उनके जाए पैदाइश सिर गोवर्धनपुर वाराणसी से मुल्क की श्री गुरु रविदास महाराज हम आहंगी करारदाद मुहिम का आगाज किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि हर शहरी संत रविदास के नजरियात को अपनाकर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ हासिल कर सकता है। इस मौके पर वजीर आला ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखने का ऐलान किया। मुल्कगीर श्री गुरु रविदास महाराज हारमोनी रिजर्वेशन मुहिम के तहत संत रविदास जी के मुकदस जाय पैदाइश से मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों तंजीमी अजला डिवीजनों देहातों और बस्तियों में भेजा जाएगा। लोकसभा ने कल अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया। लोकसभा ने अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम बिल 2026 को 10 साल तक की कैद 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और मुजरिमों को जायदाद जब्त करने का इंतजाम किया गया है। मुकदमा और मरकज के जेर इंतजाम इलाके को रोजाना की समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का हुक्म दिया गया है। पुलिस स्टेशन में इतला दर्ज होने की तारीख से 2 माह के अंदर जराइम की तफ्तीश मुकम्मल की जानी चाहिए। मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये तरमीम कानून को मजीद सख्त बनाने और तेज रफ्तार इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए की गई है। दरअसल राज्यसभा ने कौमी इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए कौमी इज्जत की तौहीन की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 भी मंजूर किया है। ये बिल वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करेगा। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम की तौहीन करने पर 3 साल तक की कैद जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। हज 2027 पर जाने वाले अफराद के नामों का इंतखाब आज कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। इंतखाब का ये अमल मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में किया जाएगा। हज के लिए दरख्वास्त देने वाले हज कमेटी ऑफ इंडिया के सरकारी वेबसाइट पर अपने कवर नंबर का स्टेटस चेक कर सकेंगे। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश से हज के लिए 22,623 इब्तदाई दरखास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती वजीर बराए मुस्लिम वक्फ व हज दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि इस बार भी आजमीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएगी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में मुनाकिद होने वाले 2026 दौलत मुश्तरका खेलों में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने मर्दों के 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम किया है। वो इवेंट में तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का फोन इन कार्यक्रम हेलो पनघट।

0: गंगा। अरे ओ गंगा, अरे हम तोसे कहा राम राम।
1: राम राम जया बहनी, और पनघट सुने बैठी सब बहनी हरिन के राम राम। देखा आज पनघट पे कुछ विशेष है, आज हेलो
0: हाँ
1: पनघट है
0: हाँ और देखा
1: ना।
0: आज जब हेलो पनघट की बात करी थी तो
1: हाँ
0: सबसे पहले तो ये बतावा गंगा
1: हाँ
0: कि आज जो हेलो पनघट का जो विषय है वो
1: हाँ
0: का है।
1: आज है अंडाशय में गांठ या ओवरियन सिस्ट और उनसे जुड़े रोग, है ना। देखा बहनी, स्वास्थ्य ही जीवन के सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन देखा अक्सर बहनी हरन अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्या के या तो नजरअंदाज कर देती या फिर संकोच में समय पे डॉक्टर से सलाह ना ले
0: बिल्कुल
1: पाती।
0: सही गंगा, देखा सही बात है। हमारे जो बहनी हरिन है उनका ई चाहिए कि देखा आपन ख्याल रखें, और देखा अक्सर कई बात हो बार होते कि छोट छोट छोट छोट परेशानी का उन लोग नजरअंदाज कर देते। तो देखा सबसे पहले तो उनके लिए ये सलाह है कि आपन विशेष और विशेष ध्यान रखें, ख्याल रखें। कैसे देखा उनकर जो जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखा जो समस्या के बारे में हम सभी बात करब, तो अंडाशय में गांठ या ओवरियन सिस्ट, देखा बहुत जने हैं।

0: का हर ओवरियन सिस्ट की खतरनाक होते है ना, का एमा गर्भधारण करे में परेशानी होते, का हर सिस्ट में ऑपरेशन जरूरी होते, कौन कौन से लक्षण बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करे के चाहिए, और कब ई सामान्य समस्या गंभीर बीमारी के रूप ले सकत है। यही सब महत्वपूर्ण सवालन के जवाब जाने के बदे आज हेलो पनघट में हमारे साथे मौजूद हैं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता यादव।
1: डॉक्टर साहब, आपके हमारे पनघटे पे बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: जी,
2: हमारी तरफ से भी आपको शुभ दोपहर
1: जी,
2: और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये जो एक प्रमुख कारण है लोगों के मन में एक भ्रांति होती है
1: जी,
2: उनका एक निवारण करने के लिए मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम सरल भाषा में हम लोगन का ये बतावे कि अंडाशय यानी कि जो ओवरी होते है वो का होत।
2: देखें, ओवरी हमारे जो शरीर का बहुत अभिन्न अंग होती है। ओवरी बच्चेदानी से लगी हुई एक लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर की एक छोटी सी अंडाशय होता है, जो हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन हैं उनको लगभग कई हार्मोन्स को संचालित करता है और हमारे शरीर को एक सही दिशा में अग्रसर करता है, और सारे हमारे जो मूड स्विंग्स हैं, जो हमारा थोड़ा सा दिक्कत होती है, माहवारी की दिक्कतें होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं उन सबको निर्धारित करता है।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। दिखा हमारे बहनी लोगन के मन में भी कई बार मतलब उनका लगत है कि एक जो जैसे भी यदि डॉक्टर के पास गई या एक ही जानकारी हो गई तो एक मन में डर भी बन जाते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात और ही बतावें कि अंडाशय का मुख्य कार्य का होता है।
2: अंडाशय में जो हमारा जो वो होता है दिमाग होता है, दिमाग में 2-3 वो होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से कुछ हार्मोन निकलते हैं। सबको पता है कि जो उसमें जो हार्मोन होते हैं वो हमारे पूरे शरीर के रक्त धारा द्वारा संचालित होते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन फिर उसमें होते हुए ग्रंथियों से होते हुए अंडाशय में आते हैं। तो जो अंडाशय का मेन काम होता है वो हमारी पचेदानी को सुचारू रूप से चलाना
1: जी।
2: उसमें क्या होता है, जो हार्मोन निकलता है ओवरी से अंडाशय से, वो अंडाशय से जाता है बच्चेदानी में, और बच्चेदानी से जो महीना आता है, जो माहवारी होती है, जो नॉर्मल जो हमारा जो हर महीने हमारी माहवारी होती है, और हमारे जो पूरा शरीर है उसमें जहां जहां उस हार्मोन की जरूरत होती है वो वहां जाता है, उसको सुचारू रूप से संचालित करता है।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। हमारे बहनी और इनके कुछ जो ऐसे जुड़ी जो भ्रांति है वो दूर हुई। हमारा अगला प्रश्न ये है कि सबसे पहले ये बतावें कि अक्सर हम लोग सुनी थी कि माहवारी अनियमित हो रही है, तो एकर मुख्य कारण का है?
2: देखिए, माहवारी अनियमित होना और नियमित माहवारी में क्या फर्क होता है? हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा अगर 28 दिन में महीना आ रहा है तो 28 दिन में ही महीना आए। जब जनवरी फरवरी 31 और 28 29 का होता है तो हमारा महीना कैसे एक ही तारीख पे आ सकता है?
1: बिल्कुल,
2: हमारा जो महीना होता है वो एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद। यानी अगर आज 30 तारीख है, किसी लेडी को पिछली बार अगर 30 तारीख को महीना आया है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार भी उसको 30 को आए। वो 23-24 को भी आ सकता है और वो 5-6 को भी आ सकता है, वो नॉर्मल है। आपकी डेट से एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद जो भी डेट होती है महावारी उसमें आती है, वो नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, वो नियमित होती है। आप उसको अनियमित कब करोगे? कब कहोगे? जब उसके पहले आ जाए या और एक हफ्ते बाद में आए, 10 दिन 15 दिन में आए, चढ़ जाए या जल्दी आ जाए, तो उसको आप मानिए कि वो अनियमित है, और वो मेनली हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है, और उसके और भी कई कारण होते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इसका उम्र से भी एक कोनो लेना देना, जैसे आजकल छोटी छोटी बच्चियों में भी ये सब दिक्कत हो?
2: देखिए, छोटी बच्चियों में जैसे उनको तुरंत महीना आया, आजकल लड़कियों को जल्दी महीना आ जा रहा है, उसके लिए उसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो थोड़ा सा एक प्रकृति का एक नियम है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो

0: हार्मोन्स बॉडी में हो रहे हैं. पहले लोगों को, लड़कियों को 15-16 साल में महीना आता था.
1: बिल्कुल.
0: आज 10.5 साल, 11 साल, हद से ज्यादा 11.5 साल में महीना आ जाता है.
1: जी.
0: तो वो एक चेंजेस हैं जो बॉडी में, अब आप उसको दो तीन चीज़ें, लोग बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, उसको मिलाते हैं. बहुत ज़्यादा फ़ोन देख लिया, बहुत ज़्यादा ये कर लिया, बहुत ज़्यादा वो कर लिया, टीवी देख ली, तो लड़कियों को ज़्यादा जल्दी महावारी आ जाती है. ऐसा कुछ नहीं है, ये एक
1: भ्रांति है.
0: हाँ, ये एक भ्रांति है. और प्राकृतिक बदलाव भी होते हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ ना कुछ तो होता ही है.
1: ठीक.
0: तो अब ये समझिए कि जो लड़कियां होती हैं उनको महावारी जल्दी आ जाती है. तो उस महावारी के बीच में क्या होता है कि कुछ लड़कियों को 15-15 दिन में उससे महावारी आने लगती है, और कुछ लड़कियों को 2-2 महीने, 3-3 महीने तक महावारी नहीं आती. तो बिल्कुल माएं बहुत चिंता में हो जाती हैं, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो लड़कियों को शुरुआत में जो महीना आता है, पहला महीना, उसके बाद से 2 साल तक, 2-2.5 साल तक

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 4 बज रहे हैं, दूसरी सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आप पेश हैं एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया, लोकसभा की भी कार्यवाही जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ISAV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से आज नई दिल्ली में बातचीत कर उनकी असाधारण उपलब्धि और दृढ़ संकल्प की सराहना की। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर 14%, मध्य प्रदेश की द्वितीय सीट पर 32% और बिहार के बांकीपुर सीट पर लगभग 12% मतदान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने कल रात ईरान में हवाई हमले किए। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मुकाबला खेला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए हम पेश करने वाले हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की

0: इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खास तौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहाँ भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से, कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों, कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता।
0: जी,
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूँ और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं, वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आपने कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा

0: सुंदर कोई नहीं हो सकता।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज दुकान वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
0: नहीं देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा रुड़कता पुड़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास यू नो जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है। जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये, आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
0: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है।
1: अच्छा।
0: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे। दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
1: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज जहां तक मेरे लिए बात है। भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब वेल मुझे मैं इसमें काफ़ी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे ही शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
0: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था।

0: हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना, दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था,
1: अच्छा,
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा।
1: वाह क्या बात है,
0: है?
1: क्या बात
0: मतलब
1: है।
0: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गईं।
1: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना, जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल
1: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था? क्या घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुँचे, ये कहानी ज़रूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं, बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं ज़रूर मानूंगा, बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी, कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था, वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहाँ तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हासिल के चलो मैं भी दे लेता हूँ, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया और मानिए मेरी बात, 7ों का क्लियर हो गया,
0: वाह,
1: 7ों क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था, उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। 7ों के 7ों एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
0: अच्छा।
1: 8 के 8 ने आईआईटी के एग्जाम पर जोर लगाया और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम 7 रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने, और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
1: वो हम ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था।

0: में हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास तीन चार चार हम इकट्ठे थे, एक होता था एनसीसी वाला तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, एक और होते थे वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था, तो हम चार थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहाँ हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा, और देखा कि फाइनली वो एग्ज़ाम दे रहा है। जब वो एग्ज़ाम दे रहा था, हमने कहा चलो भाई हम भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्ज़ाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉर्पोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई, और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो वहाँ से कॉल अप लेटर आ गया SSB का, तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ गए, वहाँ पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफ़ी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा
0: अच्छा, अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ GTOs वाला जो काम था वो भी आ गया, तो वहाँ फिर लाइनअप लगी। तो वहाँ पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा।
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली। सो आई हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज़ पहली बार में होती चली गई, और उसके लिए आज मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस। मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कर्नल साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन जैसे आपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीज़ों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियाँ भरपूर करते थे, शैतानियों से भी ऊपर शैतानी करती थी, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में, सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी।
1: अच्छा,
0: बढ़ चढ़ शैतानी, बढ़ चढ़ के,
1: क्या
0: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोल कर निक्कर पहन कर बारिश में भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया।
1: वाह।
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे, अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे, तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी।
1: अच्छा।
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था, कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, कि जहाँ लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की

0: परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ अच्छा। कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: क्या बात है, वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया, और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया, और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर,

0: अगर इनके कैनवस को देखूँ ना मैं, तो मैं कहूँगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ. वाई? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है. लेकिन लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है. और इसी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है. और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं. अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं. भले ही आपने अपनी ज़िंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूं कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे. जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है.
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को. लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था. अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ. इसलिए मेरे को कभी नहीं नज़र आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता. क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया. मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई. बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तू करेगा. सो दैट इज़ द वे जो लाइफ है. और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है. आप में और आपके जवान में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ कंधे का है. और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं. उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूँ कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ. जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है. और वहाँ हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं. यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी. सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा. इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है. उसमें आपकी ठुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी. बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का. मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें यह नज़र नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा. आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा. सो दैट इज़ अ सिकनेस. सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस. बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती. मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूँ, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज़ होने नहीं दूंगा.
0: जी बिल्कुल. अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया. सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे. क्योंकि देखिए, ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया. 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली. और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी. ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपये महीना वहाँ पर भी अलाउड हो गए. लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं. बोला आपके जमा होते रहेंगे. अच्छा. आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे. सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे. और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी. मतलब 2800 से भी कम. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया.

0: हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई थी।
1: वाह, अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
0: जी
1: तो
0: जी
1: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
0: ओ, ये मेरी बदकिस्मती है
1: अच्छा,
0: कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ। सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइड्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले, वो मेरठ में हुए थे। और आज मैं कह सकता हूँ तब से लेकर अब तक कभी कोई राइड नहीं हुआ मेरठ में।
1: वाह,
0: तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहाँ थे, जहाँ पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन। और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहाँ तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे कि आप खुद एक डेस्टिनी लावर हैं, कि किस तरह के से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उस तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा।
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
1: अच्छा
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूँ। मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए। हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
1: वाह, क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे फैसले से कायापलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग। आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं, करण
0: बिल्कुल
1: साहब?
0: बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं।
1: वाह, क्या बात है,
0: मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं
1: वाह,
0: मुझे।
1: क्या
0: और
1: बात है,
0: ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
0: देखिए मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएन के रहेगा श्रीनगर, क्योंकि
1: जी
0: उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई। सो اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے. اگر کہیں کسی اور دلی ولی میں ہوتا تو پتہ نہیں کوئی شادی کرتا ہے.

0: मठवाई श्रीनगर में शादी हो गई।
1: वाह क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
0: नहीं ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड।
1: क्या बात है।
0: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
0: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा। दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीज़ें करते जा रहे थे, वहाँ से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहाँ से और यहाँ से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा,
0: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528वां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
1: शब्द नहीं है, निशब्द हूं। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूं जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जिस वक्त सुन रहे होंगे, वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए

0: देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है. आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज. किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोच कर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूँ देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए. आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन. हम यही कहते हैं अगर आप नहीं तो हम नहीं. एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
1: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ.
0: अभी तक
1: वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है.
0: वाह.
1: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है. और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है. इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी. और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई एम नॉट, आई हैव टू रीलिव. मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ. मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी. एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है.
0: वाह, आपने आज निशब्द कर दिया. आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर की इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं. कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा. और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं. इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं. क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे. बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है, और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी. अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में, मेरा इसमें अहंकार नहीं है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो. देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए.
0: बहुत खूब. यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूँ. एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है. मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजंस लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं. अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल. दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा. तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उसे एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर.
0: क्या?
1: और वो फायर बोलना लिटरली

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। आवाज़ें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार हैं अनिल पांडे, संगीतकार हैं संदेश शांडिल्या।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए ये सूचना। दिनांक 31 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे प्रोफेसर SD मैकार्टी। आप अपने प्रश्न शाम 6:30 से 7:15 तक हमारे फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और दूसरा नंबर है 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर कृपया फिर से सुन लें 0532-2970-462 और दूसरा नंबर है 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। ये नंबर भी एक बार फिर से सुन लें, व्हाट्सएप भेजने के लिए 8004926250 पर भी आप भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सुर से। आवाज है महालक्ष्मी की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: Hello, hello, hello. Good evening, dear listeners, change makers, visionaries और हमारे प्यारे दोस्तों, सुनने वालों को ज्योति का प्यार भरा नमस्कार
1: और सेजल की तरफ से supercharged welcome. आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो युवानी. वैसे ज्योति, भाई आज की शाम में एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है ना?
0: बिल्कुल,
1: लगता है आज के हमारे लिसनर्स ने चाय के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी भी पी ली है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एनर्जी हो भी क्यों ना, आज का टॉपिक ही ऐसा है जो हर उस माइंड को टिकल करता है जो कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहता है ना सेजल?
1: हाँ, बिल्कुल.
0: आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी की, मतलब कैसे आज के यंग माइंड्स जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं.
1: वो दिन गए जब लोग बोलते थे बेटा चुपचाप 9 to 5 जॉब पकड़ लो. आज का मंत्र है अपना आइडिया, अपना बिजनेस और अपना बॉस खुद बनो, क्योंकि आज का यूथ सिर्फ सपने नहीं देख रहा है बल्कि उन सपनों को बिजनेस प्लान बनाकर सीधे मार्केट में उतर रहा है. कोई गांव-गांव तक डिजिटल रेवोल्यूशन ला रहा है तो कोई AI पर काम कर रहा है, तो वहीं कोई वेस्ट से बेस्ट बना रहा है.
0: बिल्कुल, जरा सोचिए दोस्तों, कुछ साल पहले तक अगर कोई अपने घर में बोल दे कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर या फिर अपनी पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू कर रही हूँ, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा होता था? कोई कहता था कोई स्टेबल जॉब क्यों नहीं करते हो, तो वहीं कोई कहता था कि ये अब हाथ से निकल गया है.
1: बिल्कुल, लेकिन आज वही मम्मी पापा गर्व से कहते हैं हमारे बच्चे का अपना स्टार्टअप है.
0: ये जो सोच में बदलाव आया ना सेजल, यही असली क्रांति है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है. और दोस्तों जानते हैं इनमें सबसे खास बात क्या है, इसमें पूरी वेव की कमान 20 से 30 साल के युवाओं के हाथों में है, चाहे वो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हों. अब जो है वो करोड़ों डॉलर की कंपनी बन चुके हैं या फिर छोटे शहरों के Tier 2 या फिर Tier 3 सिटीज़ में आने वाले वो छोटे लड़के लड़कियां जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी पर जुनून कूट कूट कर भरा था.
1: बिल्कुल, और यूथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, नई टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी अपनाने की कैपेबिलिटी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आगे बढ़ने का साहस है, और वे परेशानियों को अवसर में बदलना जानते हैं. यही कारण है कि आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुका है.
0: बिल्कुल, हालांकि स्टार्टअप की जर्नी आसान नहीं होती है. पैसे की कमी, कंपटीशन, एक्सपीरियंस की कमी और फेलियर के डर जैसे कई चैलेंजेस सामने आते हैं, लेकिन जो युवा पेशेंस, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वो इन चैलेंजेस को पार करके सफलता ज़रूर हासिल करते हैं.
1: बिल्कुल, और आज का समय इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का है,

0: पहले ज्यादातर यूथ का एम केवल अच्छी नौकरी पाना होता था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस सोच को बदल रही है। अब युवा केवल नौकरी पाने की नहीं, बल्कि खुद का बिजनेस शुरू करने करके दूसरों को जॉब देने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, और यही सोच स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रही है।
1: सीजल, स्टार्टअप सिर्फ कोई बिजनेस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये प्रॉब्लम को देखकर शिकायत करने के बजाय उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की एक सोच है।
0: जैसे
1: जैसे पानी की बर्बादी देखी है तुमने, कितना हम लोग पानी वेस्ट करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उसके लिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया हमारे दोस्तों ने। किसानों की परेशानी देखी तो
0: हाँ
1: एग्रीटेक ऐप लॉन्च कर दिया। पढ़ाई में दिक्कत देखी तो एडटेक प्लेटफॉर्म्स खड़ा कर दिया।
0: वाह क्या बात है ज्योति, इसे कहते हैं कि समस्या को अवसर में बदलना, और इस बदलती सोच को तो हम सलाम करते हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: तो ज्योति, हम बात कर रहे थे कि कैसे यूथ के पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार यूथ के मन में एक बड़ा सवाल आता है, यार आइडिया तो मस्त है लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, गाइडेंस कौन देगा? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारी सरकार ने युवाओं के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है।
8: बिल्कुल।
7: अगर आपके पास यानी सॉलिड आइडिया है तो भारत सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
8: हाँ, सरकार युवाओं को सपोर्ट करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना जैसे इनिशिएटिव्स युवाओं को ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटोरशिप और बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी सुविधाएं भी दे रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर और मेंटोरशिप भी यूथ्स को अपने थॉट्स को सक्सेसफुल बिजनेस में बदलने में हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए हमारे यंग लिसनर्स आपको बताते हैं उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो उनके स्टार्टअप के सपने को सच कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की।
7: और इसके तहत अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स में छूट मिलती है।
8: तो पेटेंट फाइल करने में 80% तक सब्सिडी मिलती है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है।
7: और इसके साथ ही अगर आपको शुरुआती फंडिंग या छोटा लोन चाहिए तो मुद्रा योजना आपके लिए बेस्ट है। इसमें बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपीज़ तक का लोन 3 कैटेगरीज, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण, इनको मिल

0: करता है.
1: स्टैंड अप इंडिया और खासकर हमारी महिला एंटरप्रेन्योर के लिए स्टैंड अप इंडिया है, जहां 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक लोन एक नए बिजनेस के लिए दिया जाता है.
0: और इसके साथ ही अटल इनोवेशन मिशन यानी एम, अगर आपका स्टार्टअप टेक्नोलॉजी या रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप और सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं.
1: यानी कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि अब बहाने बनाने का टाइम खत्म हो चुका है. अगर आपके पास विजन है तो रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हैं. दोस्तों अब हमें स्कीम्स तो पता चल गई, लेकिन कई बार यंगस्टर्स रिस्क लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है अगर फेल हो गए तो.
0: और स्टार्टअप की दुनिया में का पहला रूल तो यही है कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस. यानी जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप बेहतर संभालना नहीं सीखेंगे. तो चलिए आज आप सभी युवा साथियों को देते हैं स्टार्टअप के 3 golden rules.
1: फर्स्ट रूल है सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम. कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत शुरू करिए. ये देखिए कि आप सोसाइटी या अपने कस्टमर की किस असली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि वैल्यू क्रिएट भी होगी और वैल्यूएशन अपने आप बढ़ेगी.
0: और सेकंड रूल है बिल्ड द राइट टीम. यानी एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है. आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए जिनका विजन आपसे मिलता हो और जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े रहें.
1: रूल नंबर 3, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. रातों रात कोई भी यूनिकॉर्न नहीं बनता. सफलता वक्त मांगती है. अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को रोज 1% बेहतर बनाने की कोशिश करिए. तो ये 3 rules अगर आपके हमारे यंगस्टर्स याद रखें तो सफलता मिलना तय है दोस्तों. तो उठिए, सोचिए, प्लान बनाइए और अपने सफर का ये जो सफर है उसको शुरू कीजिए, क्योंकि ये दौर हम युवाओं का है.
0: बिल्कुल. और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टअप्स का मतलब केवल नया बिजनेस शुरू करना नहीं है, बल्कि किसी प्रॉब्लम का नया इफेक्टिव और यूजफुल सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करना है. जब कोई युवा अपने नए थॉट्स, टेक्नोलॉजी और अपनी मेहनत के बल पर ऐसे बिजनेसेस शुरू करते हैं जो लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाए, तो उसे ही असली स्टार्टअप कहा जाता है.
1: लेकिन सेजल अभी हम लोग ने बात की कि कई बार ऐसा होता है कि हम फेल भी हो जाते हैं.
0: बिल्कुल,
1: है ना. तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का एक और चांस होती है. अगर ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने युवाओं को केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं बल्कि नए अवसर पैदा करने के लिए भी प्रेरित करें. अगर हर युवा अपने टैलेंट, स्किल्स और इनोवेशन का सही यूज़ करे तो वो ना केवल अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते बल्कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी एक अहम रोल अदा कर सकता है.
0: तो दोस्तों ये याद रखिए कि किसी अंत की शुरुआत नहीं बल्कि आपके नए सपनों की शुरुआत है. आज ही अपने डायरी का पेज खोलिए और उस आइडिया को लिखना शुरू कीजिए जो काफ़ी समय से आपके दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि जो डर गया वो रुक गया और जो चल पड़ा वही इतिहास रच गया.

0: दोस्तों, आज का दिन ना बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसे हम खुद चुनते हैं,
1: यानी कि वो रिश्ता है दोस्ती का। और दोस्ती, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, अगर हम बात तो दोस्ती कर रहे हैं तो भाई आज 30 जुलाई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य है लोगों के बीच दोस्ती, विश्वास, आपसी सम्मान और शांति का संदेश फैलाना।
0: और कहते भी तो है ना, दोस्त वो नहीं जो हर खुशी में साथ हो, दोस्त वो है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो।
1: बिल्कुल, बचपन की शरारतों से लेकर कॉलेज की यादों तक, ऑफिस की भागदौड़ से लेकर जिंदगी के उतार चढ़ाव तक, अगर कोई रिश्ता हर मोड़ पर मुस्कुराना सिखाता है तो भाई वो है दोस्ती।
0: आज के डिजिटल दौर में हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स होना आसान है, लेकिन एक ऐसा दोस्त होना जो आपकी खामोशी को भी समझ ले, वही असली दोस्त होता है दोस्तों।
1: और दोस्तों, दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक का नाम नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का रिश्ता है। एक अच्छा दोस्त वही है जो आपकी सफलता पर सबसे ज्यादा खुश हो और मुश्किल समय में सबसे पहले आपका हाथ थामे।
0: अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जिसने हमेशा आपका साथ दिया है तो आज का दिन उसे थैंक यू कहने का है, सबसे अच्छा मौका है। कभी कभी एक छोटा सा संदेश भी रिश्तों को और मजबूत बना देता है।
1: तो दोस्तों, आज ही अपने खास दोस्त को कॉल कीजिए, मैसेज भेजिए या अगर संभव हो तो मिलकर पुरानी यादें ताजा कीजिए, क्योंकि यादें ही दोस्ती की सबसे खूबसूरत पूंजी होती है।
0: आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे।
1: तो दोस्तों, दोस्ती कोई शब्द नहीं, एक एहसास है। हर मुस्कान के पीछे छुपा एक विश्वास है। रिश्ते तो कई बन जाते हैं जिंदगी में, लेकिन सच्चा दोस्त हर सफर की सबसे खूबसूरत आस है।

0: थैंक यू दोस्तों।
1: और ज्योति, वैसे थैंक यू तुम्हें भी भाई, आज फ्रेंडशिप डे है तो हम एक दूसरे को थैंक यू ना बोले ऐसा हो सकता है?
0: इसीलिए तो मैंने कहा ना थैंक यू। दोस्तों, इसी के साथ हम ना हर एपिसोड में कुछ नया लेकर आते हैं और यही तो युवानी की पहचान भी है।
1: और हम चाहते भी हैं कि हर बार जब आप युवानी सुने तो अपने साथ कुछ नई यादें और एक नया अनुभव लेकर जाएं, है ना?
0: बिल्कुल, इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रोग्राम में एक अलग सेगमेंट लेकर आए हैं जो है
1: कविता पाठ, और कविताकार है पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा। तो क्यों ज्योति, देर किस बात की भाई, चलो सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल।
2: नमस्ते श्रोताओं, मेरी पहली कविता गुमान। कितना गुमान था मुझे, मैं पत्थरों का पहाड़ हूं, ना आंधी ना बारिश, ना कोई नदी ना सागर, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, ना ही किसी की धारा मुझे परिवर्तित कर सकती है। पर मैं भूल गया कि समय और कालखंड के साथ सब नष्ट हो जाएगा। अपने अहम में चूर मैं आखिर वक्त के साथ रेत हो ही गया, वही रेत जिसे आंधी बारिश नदियां सब अपने साथ बहा ले जाती हैं। लेकिन इस अहम का शिकार

केवल मैं नहीं हूं, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर चुका मनुष्य रूपी जानवर भी इसका शिकार है, जो सब कुछ अपने बस में करना चाहता है लेकिन समय के साथ सब कुछ उसके हाथ से छूटता जाता है। कुछ नया तलाशने और तराशने में एक दिन स्वयं को वैसे ही खो देता है जैसे आज मैं। मेरी दूसरी कविता, लड़के। इस हंसते चेहरे के पीछे, इन मुस्कुराते होंठों के दरमियान कई सपने दफन हैं। कभी चेहरे से ध्यान हटे तो देखने की कोशिश करना, तुम्हें एक खुद से हारा हुआ लड़का मिलेगा जिसकी दुनिया इस दुनिया में कहीं खो गई, कहीं जिसके ख्वाब उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच कहीं अटके पड़े हैं, जिसका लक्ष्य अभी खुद को ढूंढना है, जिसकी मोहब्बत बस कहानी हो गई, जिसके आंसू पत्थर हो गए, जिसकी पलकें भीगना भूल गई और फिर एक जिस्म है उसके पास, जिसे बचाए रखने पर दुनिया उसे संघर्षशील कहती है, उसी की जद्दोजहद में वो लड़का मर रहा है। हाँ, वो संघर्ष कर रहा है। मेरी अगली कविता, प्रिय पेड़। प्रिय पेड़, तुम अभी तक इतने निस्वार्थ कैसे हो, जब ईंट और सीमेंट के नीचे दबी मानवता तुम्हारी बलि चढ़ा देती है किसी खान के लिए, जब उसे जरूरत है तुम्हारी हवा से ज्यादा उन पत्थरों की, जिन्हें वह कीमती कहता है, उस विकास की जिस पर से वह भाग सके, दूर दूर तक तुम्हें अधमरा करके तुम रोक क्यों नहीं लेते एक दिन के लिए शुद्ध हवा और ऑक्सीजन, और बन जाओ मानव ताकि पता चल सके उस मानव को जो लालायित है स्वार्थ सिद्धि को, वो क्या करेगा गर तुम नहीं रहे। पेड़, तुम अभी तक मानव नहीं बन पाए। मेरी अगली कविता है मानवीय पैमाने और मैं। बांधना चाहता था मैं हमेशा खुद को वक्त के दायरे में, ताकि समझा सकूं खुद को और उन लोगों को भी कि मुझे इल्म है अपने वक्त का और उन लोगों की महान बातों का, जिनके हर क्षण में कर्तव्य बोध था। पर सच कहूं, मुझे आवारगी पसंद थी, मुझे समय में खुद को बांधना कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे पसंद है यूं ही जंगलों में टहलना, रेत को हाथ में लेकर यूं ही उड़ा देना, नदी के पानी को हाथ से यूं ही उछाल देना बिना बात बेवजह। मुझे पता है लक्ष्यहीन मनुष्य पशु के समान है, पर पशु होना क्या इतना बुरा है? क्या मानवीय पैमाने सच में बहुत संकीर्ण नहीं है? पता नहीं मैं कैसे कह सकता हूं, पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि पशु और मनुष्य में मुझे बहुत अंतर समझ नहीं आते। शायद मैं समय की परिभाषाओं में, मानवीय पैमानों में बहुत पीछे छूट गया हूं, या शायद

0: दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। मेरी अगली कविता वक्त लगता है। वक्त लगता है घुटनों से चलते हुए खड़े होकर चलने में, भरोसा करना पड़ता है कि हम गिरेंगे नहीं, कोई होगा जो हमें संभाल लेगा, पर ये केवल अब सोचा जा सकता है। पर जब हम समझ सकते हैं तब जब हम समझ सकते हैं पर जब गिरना था तब असल में कुछ सोचा नहीं गया था, पर अब जानते हैं कि गिर रहे हैं। अपनी तरह बनाने में लगी दुनिया हमें गिराना चाहती है, पर उम्मीद है कि भरोसे पर कुछ लोग खरे उतरेंगे, वैसे ही जैसे जलाशय का जल कमल को ऊपर उठाकर गिरा नहीं देता, उसके अस्तित्व के लिए स्वयं भी संघर्ष करता है सूरज की रोशनी से, ताकि किसी के अस्तित्व को वक्त मिल सके।
1: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे कविता और रचनाकार थे पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा।
2: तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी प्रिंट पुंज में। और साथियों, सक्सेस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे फैसलों, लगातार मेहनत और कभी ना हार मानने वाले हौसलों का नतीजा है। आज हर कोई जल्दी सक्सेस पाना चाहता है और हम अक्सर उन्हीं लोगों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं जो कुछ समय के लिए ही चर्चा में होते हैं।
1: लेकिन सेजल, वक्त के साथ ट्रेंड्स बदल जाते हैं, जबकि कुछ नाम इतिहास में आज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने पहले थे। बुक्स हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी एक खुली किताब है। उनके संघर्ष, उनके फैसले और उनके मूल्य हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हैं तो सीखने की चाह कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए, प्रेरणा पुंज में आज मिलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी जर्नी हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ बड़े पद तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस पद की गरिमा को अपने कर्मों और व्यक्तित्व से और भी ऊंचा बनाने में है।
2: तो आइए जानते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर शर्मा ने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी विद्वता, अनुशासन और सीखने की लगन उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे।
1: लेकिन उनका जीवन केवल बुक्स तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष भी किया।
2: बिल्कुल,
1: उनके लिए राष्ट्रहित हमेशा व्यक्तिगत हित से ऊपर रहा और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई। वो भोपाल राज के मुख्यमंत्री बने, फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। उनकी प्रशासनिक क्षमता और निष्पक्ष कार्यशैली के कारण उन्हें
2: आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, साल 1987 में डॉक्टर शर्मा भारत के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए और 25 जुलाई 1992 को उन्होंने भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक परंपराओं और निष्पक्षता को इम्पोर्टेंस दिया। और वैसे भी ज्योति किसी व्यक्ति की असली ऊंचाई उसके पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहारों से भी नापी जाती है।
1: बिल्कुल, और पता है सेजल, उनकी ये प्रेरणादायक यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे नॉलेज इज द पावर, यानी सीखना कभी मत छोड़िए, और सक्सेस विदाउट वैल्यूज इज एम्पैथी। अगर सफलता के साथ ईमानदारी और विनम्रता नहीं है तो फिर वो सफलता अधूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पोजिशन डजंट डिफाइन यू, पर्पज डज।
2: और याद रखिए दोस्तों, मोबाइल की गैलरी स्क्रीनशॉट से भर सकती है, लेकिन लाइफ सिर्फ उन बातों से बदलती है जिन्हें हम समझते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं।
1: वो केवल राजनेता ही नहीं बल्कि लेखक और विचारक भी थे दोस्तों। उन्होंने कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोकतंत्र पर कई किताबें लिखी और हमेशा शिक्षा के मूल्यों को बढ़ावा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमें भी इनसे बहुत सीखना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत भी
2: बिल्कुल
1: है।
2: बिल्कुल, तो दोस्तों ये थी अब कुछ बातें हमारे आज के प्रेरणा पुंज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। तो है हमारे पास अभी एक और

0: दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट क्वेश्चनेयर की, और जिसमें कल का प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और इसका सही उत्तर है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत।
1: और हमारा आज का प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस विजन वॉइस रॉय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। इसके सही जवाब आप हमें लिख सकते हैं हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 8004926250। अगर आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति
0: और मुझे यानी सेजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला यह विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: I'll be taking note of it.
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुप जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,370 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माही और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग होगी। रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। हिंदी कार्यक्रम का समय है शाम 7:31 का, जिसमें आज आप सुनेंगे वीरेंद्र तिवारी और हरीश चंद पांडे का कविता पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर ज्योति आनंद के स्वर में भजन और गीत होंगे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का समय होगा रात 8:15 का। सबरस का समय होगा

10 मिनट का, जिसमें आज आप सुनेंगे वीरेंद्र तिवारी और हरीशचंद पांडे का कविता पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर ज्योति आनंद के स्वर में भजन और गीत होंगे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का समय होगा रात 8:15 का। सबरस का समय होगा रात 8:30 का। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नजर। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे मदन मोहन सिंह से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत, कृषि वानिकी से लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर डॉक्टर चित्रा पांडे की वार्ता होगी, बाँझपन की समस्या, कारण और उपचार। कल प्रातः 7:30 से राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट प्रसारित होगी। 7:45 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम होगा 8:45 पर। कल प्रातः 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में तरुण नंदी के स्वर में गीत और भजन होंगे। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। लोकगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर, जिसमें कलाकार होंगे राम शरण यादव और साथ ही रश्मि भारतीया पुरुषोत्तम। 11:30 पर कार्यक्रम होगा यूथ एक्सप्रेस। दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाहिद परवेज का सितार वादन। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें डॉक्टर सरोज सिंह की वार्ता होगी प्रेमचंद के कथा संसार की स्त्रियां पीड़ा से प्रतिरोध तक। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT ये कार्यक्रम होगा दिन में 2:30। शाम 5:00 बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। शाम 5:15 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी, जिसमें कल विनीत कुमार शर्मा की वार्ता होगी युवा लेखकों के समक्ष लेखन और प्रकाशन की चुनौतियां। कल शाम 6:30 होगा पंचायत घर कार्यक्रम में हेलो पंचायत घर। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा का काव्य पाठ होगा। कल शाम 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में इसके घोष के स्वर में गीत और भजन होंगे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8:00। कल रात 8:15 पर आप सुनेंगे रूपक साहित्य के उन्नायक मुंशी प्रेमचंद, आलेख रणविजय सिंह सत्यकेतु का। रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा। रात 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

0: स्वतंत्रता प्यारी के कारण निकल पड़े रज दूर।
1: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6:20 होने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अंशी अपि समुपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य केन्द्र सर्वकाराय प्रोक्तम् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे नवदिल्ल्याः जंतर मंतर स्थले विनियोजितस्य द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षिततया स्थापनीयमिति। सर्वोच्च न्यायालयेन विधि व्यवस्था पालनाय पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगे पूर्ण प्रतिबंधस्य याचनामधिकृत्य प्रश्नः उत्थापितः। न्यायालयेन आरक्षक अनुसंधान विकासाभिकरण संस्थायाः परामर्शमधिकृत्य कथितं यत् आरक्षिणः असाधारण स्थितिषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगार्थम् अधिकृताः सन्ति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य सहैव न्यायाधीशयोः जायमाल बागची वी मोहन इत्येतेषां पीठिकया दिल्ली सर्वकाराय अपि आदिष्टम् यत् विरोध प्रदर्शनेषु ये भुशुण्डिकया व्रणिताः अभवन् तेभ्यः उत्तम चिकित्सा सौविध्यं प्रदातव्यमिति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्य महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अतिवृष्टेः संभावनां प्रकटय्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेनानेन आगामी दिनद्वयाभ्यन्तरे अरुणाचल प्रदेशे केरल माहे क्षेत्रेषु राजस्थान राज्ये च मेघ गर्जन विद्युत्पातं समेत्य अतिवृष्टेः पूर्वसूचना प्रकटीकृता। उत्तर पूर्व भारते अपि आगामीषु द्वित्रि दिनेषु तीव्र प्रभंजन सहित विद्युत्पातेन सह प्रबल वृष्टिः सेत्स्यति इति विभागेन अनुमानितम्। अत्रांतरे राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यामपि आगामिषु द्वित्रि दिनेषु मेघ वर्षणस्य संभावना वर्तते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां आईएएसवी त्रिवेणी इत्याख्यस्य सर्व महिला नौकायान अभियान दलस्य सदस्याभिः सह संवादम् अकरोत्। तासां चाद्भुताम् उपलब्धिम् अदम्य संकल्पं च भूरिशः प्रशंसन्स। अवसरेऽस्मिन् रक्षामंत्री अवदत् यत् तासां साफल्यपूर्णं सागर तरण अभियानं राष्ट्राय गौरवस्य विषयः वर्तते। श्री सिंहः प्रोदीरितवान् यत् दलस्य एषा अलौकिकी उपलब्धिः वर्तते।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: पाकिस्तानाधिकृते जम्मू कश्मीरे सोमवासरे पाक सुरक्षा बलैः शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारिणां विरुध्य नृशंस कार्याचरणं पश्चात् अद्य चत्वारिंशत् जनानां निधनानन्तरमपि उग्र विरोध प्रदर्शनं निरन्तरं प्रवर्तते। जेएएसी इत्याख्याया संस्थया सम्बद्धाः सामाजिक माध्यम संकेताः आक्षेपम् अकुर्वन् यत् पाक सुरक्षा बलैः प्रदर्शनकारिणाम् उपरि घातक शस्त्राणि प्रयुक्तानि। जीएएसी संस्थया संयुक्त राष्ट्र संघाय अन्ताराष्ट्रिय मानवाधिकार संघटनेभ्यः च साग्रहम् आवेदितं यत् ते अस्मिन् विषये शीघ्रमेव हस्तक्षेपं कुर्युः। ग्लास्गो नगरे आयोजितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य प्रसिद्धः कुन्त प्रक्षेपकः नीरज चोपड़ा स्वस्थानं सुरक्षितम् अकरोत् इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: राम
1: काल बा भैया दिनेश।
0: सुमेर भैया देखा धाने के लोग ही तो लगभग लगभग हो न गए
1: ये भैया अब समय निकलत बाटे। हम कहा थी अगर समय से फसल का रोपनी हो जाए तो भाई ब्यास अच्छा हो था, अच्छा पानी बरसत बाटे तो ऐसा में होता का कि भाई फसल अच्छी रहा तो रोग ब्याज भी नहीं लागत। तो भाई रोपनी हम तो कहा कुल पंचा से जल्दी जल्दी कह लें।
0: नहीं नहीं किसान भैया अरे तो अपने स्तर पर लगा है हो जैसे कहूँ मान ले पानी उनी के दिक्कत भय
1: हाँ जो छूटा तो, है भाई उन्हों जल्दी
0: तो
1: कह लें।
0: वो अपन जुआर में लगा है नहर का पानी उसका पानी भगवान के बरसात होता है ना तो अपन सब अपने पल्ले साधन या नहर वहर के साधन जहाँ भी बा
1: हाँ।
0: वह हिसाब से भैया अरे प्रयास में है।
1: और जे आगे जे आगे तनी लगा लिए हैं ना भैया दिनेश देखा तब हो तका कि धीरे धीरे उसमें कुछ घास पात भी नजर आवे लगा था धाने के साथे साथे तो कर निकाई गुड़ाई करके निकाल दें भाई। ओके बाद हम कहा था कि पहली सिंचाई के बाद में पहली बार पानी लगा था तो ओके बाद में उसका जो यूरिया का मात्रा बची बाटे ना उसका टॉप ड्रेसिंग कर दी तो यहाँ तरीके से भाई फसल का बचाव हो जाए फसल अच्छी रहे। और एक बात और है भाई हम देखा कहा था खेती हो किसानी हो देश हो समाज हो
0: जी जी
1: एक संबंध भाई बहुत मजबूत रहा जो मनई अपना सपनावा था और निभावा था समझता है ना।
0: बिल्कुल
1: और अपने परंपरा परिपाटी में तो ओकर बड़ा महात्म बाटे बड़ा नाम बाटे ओका कहा जात भाई मित्रता समझता है ना।
0: जी जी जी
1: वो चाहे गांव घरे के स्तर पर हो चाहे परिवार के स्तर पर हो समाज के स्तर पर हो या लोकाचार में हो तो बड़ा एकर कुछ महात्म बाटे भाई। आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस बा कि देश विदेश में मित्रता का कुछ मतलब बाटे
0: जी जी
1: और कौन तरीके से कर निर्वहन की जात है तो ओकर भैया अपने परिपाटी में तो बहुत बढ़िया उदाहरण बाटे भगवान कृष्ण और सुदामा का समझता है जेका मने आज याद करा था। तो भाई ई जो संबंध बाटे हम दिनेश समझी था कि एका भाई ऊंच नीच जाति पात धर्म भेद हाँ गरीब अमीर से ऊपर उठ के एक देख की जरूरत है समझे की जरूरत बाटे।
0: भैया देखा सुमेर एक बात यह जाना ना जहाँ तक मित्रता की बात पर अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो हम कहते कि सहोदर भाई से भी कहूँ दो कदम आगे बढ़ के वो सहयोगी बना।
1: हाँ भाई देखा ये संबंध ऐसा होता है दिनेश जेका हम तो अपने स्तर पर बनाई थे
0: जी
1: कि भाई आदमी कैसन बाटे कैसन नहीं बाटे समझता। मित्रता भाई हमेशा स्वार्थ से परे होक चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मित्रता का संबंध धर्म ही बाटे कि एक दूसरे काम आवे निर्वहन करे हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा भाई दो तरीके के तीन तरीके के देश हैं मित्र देश जिका कहा जाता है कि जिनसे हमारा तुम्हारा संबंध अच्छा बाटे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: शत्रु देश भी हैं जिनसे संबंध अच्छा ना बाटे तुम्हारा भला ना सोचते और कुछ ऐसा देश हैं जो भाई तनी नहीं में रहें ना हमें रहें समझे था
0: ना
1: तटस्थ रहते हैं जिनका गुट निरपेक्ष एक समय में नाम देने रहा
0: जी, जी, जी।
1: तो भारत भी होकर एक भाग रहा है। तो कहा
0: कि
1: मतलब विवाह भाई कि मित्रता का महात्म बाटे होकर निर्वहन करके चाहिए और एक बड़ा आनंद भी बाटे
0: जी, जी,
1: अगर
0: जी।
1: मित्रता है भाई तो बहुत कुछ चीज़ें आदमी का हो जात है। दूसर बात यह है कि देखा भाई आज किसान चर्चा के दिन है तो हिमा का कुछ खेती किसानी में हो ही रहा बाटे का कुछ पंचन का सोचब जानब बाटे ऊपर बतकही पंछरे सुनिए
0: जी जी।
1: और हम कहा देखा विलुप्त तो होती लोक कलाएं लोक कला के लिए अपन देश जाना जात है जितना धर्म संस्कृति देश रिवाज बाटे ओकर अपन एक लोक कला बाटे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ओका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली बाटे तो पैठी वार्ता पंछरे सुनिए मुलकरे पहले हम कहा तरी इंद्रजीत यादव संघातिन गावा विकास गीत बाटे हो जाए फिर बत कही हो
0: सुना था।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया दिनेश, दिखाई तो विकास गीत रहा पंचरे सुनन
4: जी जी
3: और सनेसो सुनन। अब दोनों बात कही होता है भाई कि किसान चर्चा का दिन बाटे।
4: हाँ हाँ।
3: तो का कुछ खेती किसानी में हो ही रहा बाटे
4: जी,
3: तो इंद्रजीत पटेल और फूलचंद भैया से बात कही बाटे पंचरे सुने और गुने भाई
4: सुना दो सुना दो।
5: किसान भाई देखा आप लोग तो खेती किसानी करबे करते हैं, क्षेत्र के अगर सजग किसान आवे और अपन खेती किसानी का अनुभव आप तक पहुँचावे तो हम कहें कि बहुत कुछ एक दूसरे का देख के एक दूसरे का सुन के भी सीखे के मिल जाला। किसान भाई आज अपने स्टूडियो में कर्मा क्षेत्र से फूलचंद यादव भैया एक अच्छा किसान हैं, सजग किसान हैं और खुशहाल किसान हैं आयल हुए, और करछना से इंद्रजीत पटेल भैया आप भी बहुत अच्छी खेती किसानी करत हैं, आप बढ़िया लाभ भी लेते हैं। आज भैयन का खेती किसानी का अनुभव आप तक हम पहुँचाई। फूलचंद जी, इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने ये कार्यक्रम में, अपने स्टूडियो में। सबसे पहले हम इंद्रजीत पटेल जी आपसे जानना चाहते हैं कि देखा एक चीज़ है भैया हो कि अगर आप करछना से आए हों तो एक तरह से करछना का खेती किसानी का माहौल है का ओकर जौन है स्थिति चलत हो, आप अपने नहीं बल्कि क्षेत्र और जेवार का भी बात करत हैं। आपके बात सुन के हमारा और किसान भाई भी प्रेरित होने उसे सीखे ना। बात इस समय धान के चलत हो तो हम शुरुआत इंद्रजीत जी धान से ही करब। आप कितने रकबा में धान का खेती करत हैं
6: भैया? हम 4 बीघा धान इस समय लगाए हैं भैया, और गाँव के पास पड़ोस के आदमी लगावत हैं, कुछ लोग के लग गए है, कुछ लोग के अभी लेट है, जैसे पानी की व्यवस्था थोड़ा नहर व्यवस्था हमारे तरफ नहीं है तो ट्यूबवेल से आदमी लगावते हैं, तो ट्यूबवेल का है कि लाइट रहती है तो
5: हाँ थोड़ा थोड़ा सा निर्भरता भाई बिजली बत्ती पर हो तो डीजल इंजन पे हो नहर पे हो, लेकिन देखा एक चीज़ और देखे में आओ था भैया कि अब तो धीरे धीरे बरसात भी शुरू हो गल हो, छींटा आ जात हो तो माहौल तो धीरे धीरे अब रोपाई के बन भी गल हो। जैसे ना आप बताते हैं कि आपके क्षेत्र में काफ़ी लोग का रोपाई हो चुकल हो, कुछ लोग भैया करत है ना, कुछ लोग करे की स्थिति में है, आपको रुपाई भैया हो गलो या अभी बाकी हो?
6: भैया हमारा तो रुपाई हो गया है भैया।
5: अच्छा अच्छा।
6: 15-20 दिन करीब हो गया है, खाद भी पड़ गया है।
5: अच्छा, बिल्कुल आप फुर्सत हो गई
6: ना? हाँ फुर्सत हो गया है भैया।
5: तो भैया देखा अब समय तो बीत गल है लेकिन जानकारी जरूर हम चाहब कि यह पहुँचे ताकि आगे के समय में किसान भाई होके करें। धान के जब आप अपन खेत का तैयारी करत रहला तो कौने बात का विशेष ध्यान देके कैले रहला
6: भैया? धान के खेती करबे पहले भैया देखा कुछ मिट्टी की जांच करावा पहले। मिट्टी के जांच करावा एक कोने से, चार कोने से निकाल के मिट्टी लेके ब्लॉक में जांच करावा।
5: जैसे कि वैज्ञानिक भैया के लिए तौर तरीका बतावे ना, वो स्तर से माटी का आप जांच करौला।
6: हाँ भैया।
5: आप फिर पूरी तरह से व्यवस्थित होके एकदम मन विचार बना लेला कि बढ़िया धान का खेती करे। कौन कौन प्रजाति भैया आप लगाओ थे?
6: भैया देखा एक प्रजात लगाई थे गंगा कावेरी है।
5: अच्छा।
6: तो भैया हमें कहा है कि रोग बीमारी नहीं धरत, बाकी और हमें पैदावार बढ़िया बटे भैया, और थोड़ा लागत कम है। अगर जैसे 4 पानी ले ले तो भैया तो 3 पानी में हो जाते धान।
5: अच्छा, मतलब सिंचाई थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कमजोर भी है। हाँ, तो धान के पैदावार में प्रभाव नहीं पड़ा?
6: नहीं पड़ा।
5: अच्छा अच्छा। बीज कहाँ से ले रहा?
6: बीज भैया तो ब्लॉक से लिए रहे।
5: अच्छा, बढ़िया एकदम दुरुस्त बीज।
6: हाँ दुरुस्त बीज एकदम मिला रहा भैया, और उसके बाद नर्सरी डाला तो मिट्टी जांच तो पहले कराई लिया, उसके बाद जब नर्सरी

0: डाला, नर्सरी भी बढ़िया, एक भी बीज नहीं रुका।
1: अच्छा बढ़िया।
0: हाँ जामनेशन बढ़िया गया।
1: अच्छा और जमाव भी बढ़िया
0: हाँ
1: रह गया।
0: जमाव बढ़िया गया।
1: तो जैसे कि आप धान के खेती 4 बीघा में कैले हैं, तो अब तक कितना लागत एमन आपका आ चुकल हो?
0: भैया अबे मैं कम से कम अब लेवाई से लेके जोताई, लेवाई से लेके खाद पान, खाद और बीज लेके 4 बीघा में कम से कम 12,000 रुपये खर्चा पड़ गया
1: पड़
0: है।
1: गया बा।
0: हाँ भैया,
1: अच्छा सिंचाई का अपन निजी व्यवस्था हो?
0: भैया सिंचाई की निजी व्यवस्था बा, ट्यूबवेल अपने पास बा भैया, इससे समय समय से खेती हो जाते हैं।
1: अच्छा नहीं बिल्कुल भैया, अगर खेती करे के बाद, खेती इतनी बड़ी बात तो अपन व्यवस्था रख भी बहुत जरूरी हो। कैसे अपन व्यवस्था रही हो भैया, तो क्योंकि मुँह ना ताके कोई
0: हाँ
1: देर सवेर
0: भैया,
1: ना हुई। अब खेती में कहा जाता ना कि काम अगर समय समय पर कुल हो, समय से बीज पड़ जाए, समय से खाद पड़ जाए, समय से सिंचाई हो जाए, तो भैया हो पैदावार हो
0: पैदावार
1: खूब
0: बढ़िया
1: बढ़िया
0: हुई।
1: हो जाता है। तो भैया ये जो धान का पिछला अनुभव थोड़ा सा हम जानब कि पिछले साल भी आप, हमें लगा था कि 4 बीघा की खेती जरूर कर ले रहे
0: हाँ
1: लोगों,
0: भैया,
1: और आप यही प्रजाति लगौले रहे।
0: बस यही प्रजात रही भैया।
1: अच्छा तो जैसे एक अनुमान के रूप में 4 बीघा खेती आप पिछले साल केला, 4 बीघा खेती यही साल करत है,
0: हाँ भैया,
1: तो लागत के बाद आपके बचत कितना धान से होगा लाल?
0: और लागत के बाद भैया जैसे अगर इनमें रोग नहीं लगत, तो रोग नहीं लगत तो मान के चलें कि 4 बीघा में कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपये बच जाते हैं,
1: बचत हो गया लाभ
0: बचत
1: का,
0: हो गया।
1: खाए पिए का अपन
0: खाए
1: घरेलू
0: पिए के
1: व्यवस्था हो गया।
0: अलग से रख लिया जाता
1: बिल्कुल
0: भैया साल
1: बिल्कुल
0: भर के।
1: बिल्कुल भैया हो, खेती किसानी हम कहीं अगर मन लगा के पूरी विधवा से पूरी जानकारी से कर जाए तो निश्चित रूप से लाभ तो होबे करेला।
0: लाभ
1: बिल्कुल। अच्छा इंद्रजीत भैया ये बताओ कि इतना धान का बात हो गया, सब्जी का भी कुछ खेती आप करते हैं
0: हाँ भैया,
1: इस समय का बात?
0: इस समय भैया 10-20 भिंडी लगाए भैया,
1: बहुत बढ़िया।
0: निकलतिया के भिंडी।
1: अच्छा भिंडी अब इसमें तोड़ाइन पे बा,
0: हाँ तोड़ाई पे बा।
1: का उम्मीद बा कि ऐसे आप कितना लागत हटा के अगर 10-20 में देखल जाए तो आप इस सीजन में ये समय में कितना लाभ आपके मिल जाए को उम्मीद बा?
0: भैया देखे अब भिंडी तो बरसाती सीजन है ही। हाँ फिर भी भिंडी में ठीक मतलब फायदा हो जाता है।
1: एक औसत बाजार हो जाए तो कितना तक
0: हाँ
1: लाभ आपको जा
0: अब
1: सकेला?
0: मान के चलिए कि अगर जैसे भिंडी अगर इस समय जो रेट चल रही है 120 रुपये से लेकर 150 रुपये पर सैरी चल रही है, अगर ऐसे अगर हमारा फायदा होते तो के हिसाब से कम 10-20 साल में हाँ 50-55 हज़ार रुपया सब काट पीट के
1: ये
0: फायदा
1: औसत
0: औसत।
1: औसतन आपकी इतना लाभ हो जाए भैया, तो हम कहें कि तो बहुत अच्छा बा, इमन लाभ बढ़िया बा। तो भिंडी के साथ और सब्जी की खेती नहीं करता, खाली भिंडी?
0: भिंडी के साथ साथ फूल की खेती भी भैया करे 5-20 साल
1: बढ़िया,
0: तक के।
1: बहुत सजगता बा आपके अंदर। तो फूल में गेंदा,
0: गेंदा के
1: खाली
0: पौधे,
1: गेंदा?
0: गेंदा से।
1: अच्छा तो इमन का उम्मीद लगाओ थे लाभ
0: अबे
1: का?
0: हमें उम्मीद भैया तो अभी तो लगाए हैं, वो जो पिछले गर्मी में लगाए रहे भैया ये बीजू लगावे थे, तो हमें तो फायदा भर रहा, लेकिन मार्केट के ऊपर बा भैया, जौन हिसाब से बाजार रेट रहा था वो हिसाब से फायदा हो जाता, तब भी अगर 5-20 साल में अगर 35 से 40 हज़ार रुपया
1: बचत
0: फायदा
1: बन
0: हाँ
1: जाए।
0: बचत हो जाता है।
1: हमें समझ में आता कि तर त्योहार हो तो फूल का थोड़ा सा भाव भी बढ़
0: हाँ
1: जाते
0: भाव
1: बढ़िया,
0: थोड़ा बढ़
1: अच्छा
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाता
0: हाँ
1: है।
0: अच्छा
1: बिल्कुल।
0: होता है।
1: तो भैया ये जो फूल आप खेती कर रहे हैं ना, तो एकर का फूल बेचना या माला बना के बेचना?
0: भैया एक माला बनाए पड़ा था, तोड़ के घर पे बनाए के तब उसके बाद मंडी ले जावा
1: खुद
0: जाता।
1: लेके जाला?
0: हाँ खुद के लेके जाए थे, तब वहाँ व्यापारी रहते मंडी में, तो मंडी जो रेट रहे वह रेट बिके।
1: अच्छा तो जैसे मंडी आप जाने तक, अच्छा कभी ऐसा भी लगल कि फूल के बिक्री होए में दिक्कत हो तो?
0: हाँ दिक्कत हो जाती है, जैसे अभी सीजन नहीं है, अगर इस समय तो सीजन है जो गर्मी में जैसे लगन रहते शादी ब्याह रहता है तो रेट बढ़िया मिलता है, और जब शादी ब्याह नहीं है तो का है कि रेट थोड़ा डाउन हो जाते हैं, जैसे 20 रुपये बिक रहा है शादी लगन में तो फिर 5 रुपये 6 रुपये हो जाता
1: हाँ
0: है।
1: थोड़ा सा नरम गरम
0: हाँ
1: रहे
0: नरम
1: बा,
0: गर्म होता
1: लेकिन
0: है
1: बिके
0: भैया,
1: में दिक्कत नहीं हो,
0: दिक्कत नहीं होती भैया, सब
1: मतलब
0: बिक जाता है।
1: पूरा जितना
0: हाँ
1: भी
0: बिक जाता है
1: पैदा होत बा उस सब कर
0: सब।
1: बाजार
0: हाँ
1: निकल
0: सब
1: जाता
0: बिक
1: है।
0: जाए, 19-20 कह के सब बेच लिया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ना फूल का खेती करत हैं तो का जैसे 6 महीना के लमसम फूल का खेती में आपका खेत
0: हाँ खेती में 6 महीने
1: फसत
0: लग।
1: है, तो
0: हाँ
1: वो अगले 6 महीना में का फिर नया फूल लगा देते हैं या बदल देते हैं?
0: बदल देते भैया, जैसे
1: अच्छा
0: अभी 6 महीना जो बीत गया गर्मी वाला तो उसको काट के पूरा करके धान लगा दिए भैया,
1: यह बात, यानी फूल का खेती खाली भेल अब धान लगा
0: धान
1: देबा,
0: लगा दिए भैया,
1: ठीक। अब फिर जब धान कटे?
0: धान कटे

0: फिर वही फूल की
1: फूल
0: खेती
1: की
0: कर,
1: खेती।
0: फिर फूल
1: अच्छा,
0: फिर
1: माने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूध के व्यवस्था का, पशुअन के व्यवस्था का आपके
0: पशुअन के
1: पास?
0: भैया एक भैंस एक गाय है भैया।
1: अच्छा, तो खाही भर दूध होला कि बाजार
0: नहीं
1: में?
0: नहीं बाजारू रेट जाता
1: अच्छा
0: है, लेकिन गैया देते हैं 7 लीटर एक टाइम में दूध देते हैं।
1: अच्छा मतलब कि दूध
0: हाँ
1: खाए के भी हो जाता और चारा पानी की व्यवस्था हो जाता, दो
0: हाँ
1: पैसा का बचत भी हो
0: बचत भी
1: जाता।
0: हो जाती भैया।
1: बहुत बढ़िया किसान भाई। देखा इंद्रजीत पटेल भैया कितनी संतुलित रूप से अपन खेती करत हैं। भैया देखा जागरूक किसान एक और बैठल हूँ हमारे संगे, फूलचंद यादव भैया, आप कर्मा क्षेत्र से हैं। फूलचंद यादव जी, आप अपने क्षेत्र का सजग किसान हैं, जागरूक किसान हैं, आप धान का कितना रकबा में खेती करत हैं?
0: 6 बीघा में किए
1: अच्छा,
0: हैं।
1: 6 बीघा में आप किए हैं, तो रोपाई हो गए अभी बाकी है?
0: हाँ अभी बाकी है कुछ
1: अच्छा,
0: चार
1: कुछ
0: बीघा
1: बाकी है,
0: हाँ
1: यानी बिल्कुल रुपाई का काम चलत हो?
0: हाँ चलो बिल्कुल
1: जी
0: हमसे
1: जी
0: हो ही रहा वो।
1: पानी की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? अपन निजी साधन हो, नहर हो, या कोई और तरीका
0: हाँ पंपिंग सेट है
1: अपना हो?
0: अपना नहीं है,
1: अच्छा मतलब पानी मिल जाला?
0: मिल जाते हैं वो
1: हाँ
0: नहर के साधन
1: जी
0: हो।
1: जी अब ये समझते थोड़ा सा भगवान के भी कृपा हो तो, दौरा राजा का भी, तो कुछ पानी का बरसात से भी काम चल जाता है?
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: चलिन जाते नहीं के पानी कम ही लागत पंपिंग सेट सिंचाई में।
1: हाँ। तो भाई जब माटी में थोड़ा सा नमी आ जाए तो पंप सेट से थोड़ा भी पानी जाए तो रोपा लायक हो जाता है? बिल्कुल। सब्जी की खेती आप करें कि ना?
0: नहीं भैया सब्जी खेती नहीं करी ऐसे
1: हाँ
0: की जमीन जो है गड़ी है
1: अच्छा,
0: धाने का भी कहो।
1: खलहर हो जमीन?
0: हाँ खाल है धान खेती
1: अच्छा,
0: हो
1: तो यही समय तो बारिश वाली सब्जी ना ली, गर्मी वाली?
0: गर्मी वाली हो तो जब गेहूं बोआ था तब का गया के लिए थे उसमें।
1: लगे नहीं ने समय?
0: हाँ एक भैंस एक गाय लागत है
1: अच्छा लागत है
0: गाभी है।
1: जी। तो दूध जौन हो उसे आप व्यापार के भी दृष्टिकोण से आप पशुपालन करते हैं या खाली खाए पिए के?
0: ना ही वैसे सारा काम चलत बा, व्यापारों भी होत बा, खाए
1: अच्छा
0: पिए भी है।
1: मतलब उनके खाए पिए के व्यवस्था उन्हीं की दूध से हो जाला?
0: हाँ अपनों खर्चा बचा वहीं से अपन चलत
1: बिल्कुल, दो
0: बस।
1: पैसा का अपनों भी
0: हाँ
1: लाभ हो जाला। तो दूध जैसे आप बेचत हैं तो दूध डेयरी पर जाके बेचे ना या दूध खरीदे वाले खुद दरवाजे से ले जाने?
0: ना ही डेयरी पर डेयरी पे आप पासिंग में करना
1: अच्छा
0: वहाँ।
1: पास में हो तो जा
0: हाँ
1: करके वहाँ पे आप दे देना। अच्छा, तो जैसे खाद के व्यवस्था होला, जैसे इसमें वैज्ञानिक भैया लोग लगातार कहते हैं कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करा, अब जो पुरानी परंपरा है सनई ढैचा गोबर का खाद, तो आप अपने खेत में खाद के व्यवस्था के स्तर पर जैसे कि वैज्ञानिक भैया के सलाह बा वो स्तर पर आप कैसे व्यवस्था करते हैं?
0: पहले जब पानी वानी कम बरसा रहा था तब भाई गोबर के खाद फेंकाई दी थी।
1: अच्छा
0: हाँ उसके बाद और फिर जब रोपाई के समय आवत है तब वो नहीं छोड़ी डाई वही नहीं छोड़ी खेत खराब हो गया
1: मैं
0: था।
1: रासायनिक खाद का प्रयोग आप कम से कम
0: कम
1: करें,
0: से कम करिए।
1: बहुत
0: हाँ
1: अच्छी बात है। देखा किसान भाई जागरूकता यह हो कि रासायनिक खाद का निर्भरता कम से कम करे के जरूरत हो। तो जन गोबर हमें लगा तो कि आप अगर पशु रखे हैं तो जितना खेती बा आपका उतने के लिए पर्याप्त गोबर वही पशु से हो जाते?
0: हाँ हो जाता है कुछ लोग खेत नहीं कम बाटे
1: हाँ
0: तो लोग भी गोबर वोबर दे देते हैं तो उसे
1: अच्छा,
0: ट्रैक्टर
1: मतलब
0: से फेंकाई
1: आपके
0: दे।
1: व्यवस्था एकरे अलावा भी गोबर का हो जाला?
0: हाँ ट्रैक्टर
1: हाँ
0: से फेंकाई दे।
1: अच्छा, तो इसे तो खेत की मजबूती काफ़ी आ जाती है।
0: हाँ धान अच्छा रहा था।
1: बिल्कुल, जोन पहले का एक समय रहल फूलचंद भैया कि पहले लोग सनई बोएं ढैचा बोएं और माटी के नीचे दबा के उड़द मूंग के माध्यम से भी अपने खेत को उर्वरा शक्ति बनावें, तो का आप वो स्तर पे कुछ काम करते हैं या जैसे धीरे धीरे वो युग जमाना बीतल वैसे आपके भी दृष्टि से बीत गए हो?
0: नहीं मूंग बोई दिए थे
1: अच्छा
0: उसके बाद तुड़ाई वाई हुई गई तो
1: हाँ
0: तुड़ाई के बाद जो है जो बची ना
1: हाँ
0: पौधा ओका जुताई दिन जाता है।
1: पलटवा
0: हाँ
1: देते हैं, माटी के नीचे दब जाता है?
0: माटी नीचे
1: बिल्कुल,
0: दब जाता है तो बहुत अच्छा बढ़िया खाद हो।
1: एक दौर आप वो देखें जब रासायनिक खाद का चर्चा ना रहल
0: हाँ
1: और एक दौर आप अब वो देखें जबकि लोग झोकम झोक रासायनिक खाद का प्रयोग करते रहना है।
0: बहुत ज़्यादा छोड़
1: भाई अनाज तो जौन वो समय अनाज का मजबूती रहे पौष्टिकता रहे वो अब ना हो, आप किसान भाई इनके का कहे चाहबे कि फिर लौटे के हुई वो परंपरा पर या जैसे चलत तो वैसे चलत रहे?
0: किसान भाई से हमारी कहा बा कि ज़्यादातर हरी खाद के प्रयोग करें और या कंपोस्ट खाद
1: बिल्कुल
0: और रसायन खाद के प्रयोग बहुत कम करें ऐसे कि दाना भी उतना स्वादिष्ट नहीं रहा रसायन खाद
1: नहीं,
0: से।
1: स्वाद भी ना रहत
0: हाँ
1: भैया और ताकत भी नहीं रहत। देखा वो एक समय रहल हो कि

0: सौ साल तक बाबा दादा जिए, आंख दांत कान सब बरकरार रहे। आज भैया उस समय हो गया हो कि कब बचपना आयल, कब जवानी आयल, कब बुढ़ापा आ गया पता नहीं चलत। तो कहीं ना कहीं से ये आहार का भी कारण हो।
1: बहुत
0: और हमारे वैज्ञानिक भैया लिखा दिखा, ये बार बार कहत हुआ कि भैया फिर पुराने परंपरा पर लौटा तो लौटे के पड़ी। इंद्रजीत पटेल भैया, आप हरी खाद की व्यवस्था में क्या करें अपने खेत में?
2: भैया हम ढेंचा बुआई देते हैं और उसके बाद मुर्गी पालन भी किए है।
0: अरे वाह।
2: तो मुर्गी पालन किया है तो ओकर खाद बहुत मजबूत होते भैया।
0: हाँ,
2: तो वो खाद हम गोबर के खाद में मतलब मिलाई के डलवाई देते पूरे खेत
0: बहुत,
2: में।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना मुर्गी का पालन है, फार्म आपका कितने मुर्गी का?
2: भैया ये मुर्गी फार्म तो हम बनवाए है भैया, 5 बिस्सा में लंबा है, लंबा फार्म बनता है। तो मैं भैया 4000 मुर्गी बच्चा हमें पालित है।
0: जौन खाद मुर्गी का बनत है तो वो आपके प्रयोग आपके उपयोग से भी तो ज्यादा हुई।
2: हाँ ज्यादा हुई जाता भैया,
0: होगा बिक्री हो जाला।
2: तो बिक्री का भैया जैसे बाहरी लोग ले जाते हैं तो लेबर खर्चा ले लिया जाता है, बाकी ऐसे अनुदान में
0: मतलब
2: दे दिया
0: दे
2: जाए।
0: देते हैं कि भैया
2: हाँ ले जा भैया,
0: खराब हो से अच्छा खेत में
2: हाँ
0: डाल
2: खेत में
0: दो,
2: डाल दो, आप ही के फायदा हुई।
0: बहुत बढ़िया। तो मुर्गी पालन से भी तो ठीक ठाक से आपका लाभ हो जाता
2: हाँ
0: है।
2: भैया लाभ हो जाता है।
0: देखा हो किसान भाई, खेती किसानी के साथ साथ आप अनाज के खेती करा, नगदी फसल लगावा, और देखा जैसन की भैया इंद्रजीत भैया बतौना है कि मुर्गी पालन से भी 2 पैसा है, नहीं कि ड्योहड़ अगर हर तरफ से बनल रही ना तो खेती किसानी का मौज बनी। फूलचंद यादव भैया, इंद्रजीत पटेल भैया, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, अपन खेती किसानी का बढ़िया अनुभव हमारे किसान भाई के साथ बांटें। आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ हाँ भैया दिनेश, देखा ये तो बात कही रही भाई, और धान के फसल भाई एहतियात और सावधानी बरतब जरूरी रहा था। अच्छा लगा कि पंच हमारे जागरूक हैं और अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कृषि व्यवहार कर रहा है फसल
4: भाई। देखा एक चीज़ सुमेर जाना ना कि जौन भी वैज्ञानिक विधि और नई तकनीक बा जो जानकार भैया हरे हैं वो तो बतौबे करे थे, लेकिन हम कही थे कि जो किसान भैया हरें का अनुभव बा वो बहुत काम देता भाई,
3: भाई। हाँ।
4: हम कहते जिसे देखा प्रगतिशील किसान इंद्रजीत पटेल और फूलचंद भैया अपन बताएं, तो हम कहते जौन भैया हर एक सुने हो अगर अपने में खेती किसानी में काम में अपने ही, तो निश्चित रूप से किनका लाभ होए और इनका दो पैसा का आमदनी भी होए।
3: बिल्कुल होए भाई। एक बात जो कहा जाए कि देखा भाई हर मौसम का अपन ताव तरक होता,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: चाहे जाड़ा हो गर्मी हो कि बरसात हो, और ख़ास तौर पर यह महीना में जबकि दुर्दशा चलते बाटे, कभों बारिश होत बा, कभों घाम होत बा, उमस बनी बाटे, तो ऐसा भाई अगर आस पास घरे के गंदगी बाटे, खर पतवार बा, तो मसा माछी कहों कहों जहरीला कीड़ा भी रहते हैं
4: जी जी।
3: तो भाई अपना का भी सवाच है, जानवर का भी सवाच है, और ख़ास तौर पर कोशिश ही करें भाई कि साफ पानी पिए, पानी बहुत कुछ बीमारी का जड़ होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो हम कहते पंचन का यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देखा है। और एक बात और है भाई,
4: हाँ हाँ।
3: कि देखा विलुप्त तो होती लोक कलाएं
4: जी जी
3: और एवं हस्तशिल्प, तो का कुछ है भाई एक तनी बात समझे पंच रे उदय प्रताप सिंह भैया से।
4: जी जी।
5: विलुप्त तो होती हस्तकलाएं एवं लोक कला। हस्त हाथ को कहते हैं, शिल्प शब्द शिल्पकार से लिया गया है, शिल्पकार का भाव है निर्माण करने वाला या बनाने वाला, इसे रचनाकार या कारीगर भी कहते हैं। हस्तशिल्प सामान्य तौर पर हाथों से की गई शिल्पकारी या कारीगरी को कहा जाता है। भारतीय हस्तशिल्प को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, लोक शिल्प, आध्यात्मिक शिल्प और वाणिज्यिक शिल्प। बिना किसी मशीन की मदद से बनाए गए सजावटी दैनिक उपयोगी एवं कृषि कार्य हेतु हाथों द्वारा निर्मित उत्पाद लोक शिल्प उत्पाद कहलाते हैं। इसी प्रकार विविध पारंपरिक वर्गों के धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े सामान आध्यात्मिक शिल्प के नमूने कहे जाते हैं। लोकप्रिय शिल्प जिसमें बाजार की मांग के अनुरूप संशोधन किया जाता है वह वाणिज्यिक शिल्प के अंतर्गत आता है। भारत में हस्तशिल्प अपनी लोक कला संस्कृति की पहचान का केंद्र बिंदु रहा है। हस्तशिल्प ग्रामीण रोजगार का एक मूल आधार है। भारत विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प बनाने के लिए

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मशहूर है। मिट्टी के हस्तशिल्प सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पन्न होने के बाद से मिट्टी के बर्तन भारत में हस्तशिल्प का सबसे प्राचीन रूप है। भारत बांस का निर्यातक होने के कारण यहाँ पर बांस से बनी टोकरी, सूप, चटाई, खिलौने, दीवार पर लटकाने का सामान, छाते का हैंडल आदि बहुत प्रसिद्ध है। बांस से बनी सामग्री हमारे यहाँ मांगलिक कार्यों में अनिवार्य और पवित्र मानी जाती हैं। सन, सुतली, रस्सी शिल्प बनाने का कार्य किसान के घर में होता है। यह खेत में उत्पादित मूंज, सनई, ढैंचा, बांस व केले के वृक्ष से बनाई जाती है। आज प्लास्टिक, नायलॉन की रस्सी तथा लोहे की चैन, जंजीर, सिकड़ी आदि के उपयोग के कारण सन सुतली रस्सी शिल्प का गांव में निर्माण कार्य बंद हो गया है, जिसके कारण यह कला ग्रामीण क्षेत्रों से विलुप्त होती जा रही है। लकड़ी हस्तशिल्प का कार्य पारंपरिक रूप से कुशल कारीगरों द्वारा लकड़ी के टुकड़ों को विभिन्न आकार देकर खिलौने, सजावटी सामान, स्टैंड, बक्से, कलात्मक दरवाजे, खिड़की, साह चौखट, विवाह स्तंभ, लगन चिड़िया, हल, जुआ, बैलगाड़ी, खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजार, रथ, सिंहासन, कुर्सी, मेज, पलंग, सोफा सेट, आलमारी आदि बनाए जाते हैं। खेती किसानों में आधुनिक यंत्रों का उपयोग के कारण गौवंश भी आवारा पशुओं की श्रेणी में रखे जाने लगे हैं और उनके साथ आवारा पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। इन्हीं सब कारणों के कारण लकड़ी या कास्ट हस्तशिल्प का ग्रामीण रोजगार विलुप्त होता जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में मरे हुए पशु या जानवरों से ग्रामीण चमड़ा हस्तशिल्प का कार्य बहुत अच्छा चलता था, जिसमें कारीगर चमड़े से बने मोट, जूता, चप्पल, बैग, झोला, चपकी, साटी आदि ग्रामीण जीवन से जुड़े दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण आवश्यकता अनुसार करते थे। रोजमर्रा के सामान कारीगरों द्वारा बनाए जाते थे। वह छोटे बड़े उद्योगों के रूप में फैक्ट्रियों में बनने लगे, इसलिए चमड़ा हस्तशिल्प का जो रोजगार ग्रामीण इलाकों में होता था वह बंद हो गया है। आज चमड़ा हस्तशिल्प विलुप्त प्राय हो गया है। हड्डी और सींग हस्तशिल्प के द्वारा पशु पक्षी एवं जानवरों की हड्डी व सींग से पेन स्टैंड, टेबल लैंप, लाफिंग बुड्ढा, सिगरेट के डिब्बे, गहने आदि बनाए जाते हैं। पत्थर हस्तशिल्प में पत्थरों को तराश कर शिल्पकारों द्वारा बड़े भवनों, मंदिरों, देवालय, पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय आदि का निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार राख हस्तशिल्पकारों द्वारा पत्थरों की नक्काशी का कार्य बहुत समय से किया जा रहा है। इसमें सजावटी सामान, पत्थर के आभूषण एवं घरेलू कार्यों में उपयोग ओखली, मूसल, सिल, लोढ़ा और शिवलिंग, गणेश नंदी की मूर्तियां का निर्माण किया जाता है। अति प्राचीन काल से भारत में शैल्य हस्तशिल्प के कारीगरों द्वारा शंख शैल, कछुआ शैल और समुद्री शैल से चूड़ियां, कांटे, सजावटी बर्तन, लॉकेट, बटन आदि बनाए जाते हैं। जूट हस्तशिल्प के कारीगर गहने, बैग, ऑफिस स्टेशनरी, फुटवेयर आदि बनाते हैं। बेल मेटल हस्तशिल्पकारों द्वारा पीतल की घंटी, सिंदूर के बक्से, कटोरे, मोमबत्ती, स्टैंड आदि का निर्माण किया जाता है। ऐसे ही पीतल हस्तशिल्पकारों द्वारा पीतल के बर्तन, देवी देवताओं की मूर्तियां, फूलदान, लैंप, बक्से, हुक्का, खिलौना, प्लेट्स, फलदान और कई वस्तुएं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं बनाई जाती हैं। चांदी का महीन काम या मीनाकारी या ताराकाशी शिल्पकारों द्वारा सोने चांदी के तारों से किया गया हस्तशिल्प का रचनात्मक कार्य तीन तरह का होता है। मीनाकारी, खुला जाल और फूल पत्तियों की कारीगरी से पानदान, चाय की ट्रे, झुमके, नेकलेस, ब्रेसलेट आदि बनाए जाते हैं। इसी तरह धोकरा हस्तशिल्प द्वारा गहने, मोमबत्ती, स्टैंड, पेन स्टैंड, एक्सट्रे और कई प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। कागज हस्तशिल्प के द्वारा कारीगरों चटकदार रंगों वाले कागज को मिलाकर पतंग, मास्क, सजावटी फूल, लैंप, सेट, कठपुतली, हाथ के पंखे आदि बनाए जाते हैं। लाख से खिलौने

सिंगार पेटी डिब्बियाँ आदि बनाते हैं। घास हस्तशिल्पकार जंगल और खेत में प्राकृतिक रूप से उगने वाली सुनहरी और रुपहली घास से कई प्रकार के खिलौने नित्य श्रृंगार के आभूषण ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन करते हैं। वस्त्र हस्तशिल्पकारों द्वारा मोटा सूती कपड़ा धोती कंबल डोरियां एवं सुंदर टिकाऊ पक्के रंग की सूती रेशमी साड़ियों को बनाकर रोजगार करते हैं। छापा हस्तशिल्पकारों द्वारा की गई रंगाई छपाई इतने पक्के रंगों से होती है कि

सुंदर टिकाऊ पक्के रंग की सूती रेशमी साड़ियों को बनाकर रोजगार करते हैं। छापा हस्तशिल्पकारों द्वारा की गई रंगाई छपाई इतने पक्के रंगों से होती है कि जैसे जैसे कपड़ा धुलता है वैसे रंग अधिक गहरा और चटक हो जाता है। पत्ता हस्तशिल्प के कलाकार मूलतः झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। बेत हस्तशिल्प के कारीगर टोकरियाँ, स्टाइलिश फर्नीचर आदि बनाते हैं। अब चर्चा करते हैं लोक कलाओं की। लोक का अर्थ है संसार से है। लोक शब्द अवलोकन शब्द से लिया गया है। इसका भाव है देखना। हम जब तक इस संसार को देखते हैं तो अनुभवों के आधार पर अपना ताना बाना बुनते हैं। यही लोक है। लोक का अभिप्राय सामान्य जीवन से भी है। लोक में जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक की सभी गतिविधियां आती हैं। लोक अनंत है, असीम है। जहाँ तक मनुष्य की कल्पना पहुँचती है वहाँ तक लोक की सीमा मानी जाती है। पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित सामान्य जन समुदाय की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही लोक कला है। भारत में लोक कला का तात्पर्य कृषकों की कला से है। इस कला में मंगल का भाव गहराई से छिपा रहता है। लोक कला मानव सभ्यता के साथ प्रारंभ हुई और उसके साथ ही चलती चली आ रही है। यह कला सभ्यता के धार्मिक विश्वासों आस्थाओं के साथ पली बढ़ी है। भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। देश में सांस्कृतिक कलाओं का लोक कला से बड़ा गहरा रिश्ता है। इसी रिश्ते के कारण लोक कलाएं आज तक परंपरागत रूप से विकसित होती आई हैं। जो लोक कथाओं, लोक गाथाओं, लोक नाट्यों, लोक गीतों, लोक नृत्यों, लोक वाद्यों, लोक संगीत, लोक चित्रों, लोक नायकों की शक्ति गाथा, लोक आख्यानों और मिथकों के रूप में युगों युगों से चली आ रही है, जिनका मूल कभी नहीं बदलता। हाँ, समय के साथ परिस्थिति विशेष पर अति आंशिक परिवर्तन हो सकता है। लोक कला के अंतर्गत रीति रिवाजों, परंपराओं, विभिन्न सामाजिक संस्कारों एवं धार्मिक विश्वासों का चित्रण किया जाता है। लोक कला जीवन की स्वाभाविक प्रणाली और आत्म चैतन्य से संबंधित है। इसी तरह यह जन जन में व्याप्त है। लोक कला प्राचीनता और आधुनिकता के बीच की कड़ी है। जनजीवन में एक रस होकर, हृदय को छूकर यह कला बिना किसी आलंब, आश्रय, प्रोत्साहन तथा प्रलोभन के स्वतंत्र एवं सौम्य गति से संस्कृति की सुरक्षा करती आ रही है। लोक कलाओं की सबसे बड़ी विशेषता उसका सर्वसुलभ साधनों का प्रयोग एवं प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपनी कला का माध्यम बनाना है। लोक कला सृजन की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति देती है। लोक कला का सांस्कृतिक इतिहास समृद्ध और गौरवशाली रहा है। इसमें शाश्वत सत्य प्रवाहमान है, आध्यात्मिक विकास है। संसार के समस्त प्राणियों को आत्मवत मानकर उनके प्रति प्रेम, करुणा, उपकार, क्षमा, अहिंसा एवं सहिष्णुता का भाव है। अंतःकरण की पवित्रता की ओर बढ़ना मनुष्य की पशुता को समाप्त कर उसे मानव बना ईश्वर की ओर उन्मुख करना। संस्कार परंपरागत होता है तथा आनंद उसका स्रोत होता है एवं मंगल भावना प्राण है। लोक कला संस्कृति समाष्ट संस्कृति है। इसमें मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, उत्सव आदि में लोक चित्रों का विशिष्ट स्थान है। लोक कलाकार सदियों से भित्ति को कैनवास बना अनेक सुंदर चित्रों का सृजन करते आ रहे हैं। कलाकार कभी अपनी घर की भित्ति को सूना नहीं देख सकते। चित्र पूजा के माध्यम से जन जन में लोक कला के सांस्कृतिक स्वरूप को जीवंत रखता है। भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएं बिहार की मधुबनी, उड़ीसा राज्य की पत्ता चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, चेन्नई के तंजावर की तंजौर कला, महाराष्ट्र वर्ली की वर्ली लोक चित्रकला, राजस्थानी लघु चित्रकारी, केरल की मेजुथू आदि। लोक कला केवल चित्रकारी तक सीमित नहीं है। इसके अन्य रूपों में मिट्टी के बर्तन, गृह सज्जा, जेवर, कपड़ा डिजाइन और भारत के आंचलिक नृत्यों में
पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का डांडिया, असम का बिहू नृत्य आदि हैं, जो कि उन प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को

0: अभिव्यक्त करते हैं। हस्तशिल्प लोक कला में हमेशा प्राकृतिक रंग द्रव्यों और चूर्णों का प्रयोग किया जाता है। सभी चूर्ण पूर्ण रंग द्रव्य पौधों से तैयार किए जाते हैं। सफेद रंग के लिए चावल के चूर्ण या गेहूं के आटे का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार काले रंग के लिए जली हुई भूसी या काजल, पीले रंग के लिए हल्दी, लाल रंग के लिए नींबू और हल्दी के मिश्रण या कुसुम के फूल के रस अथवा लाल चंदन की लकड़ी, हरे रंग के लिए कुछ पेड़ों की पत्तियों, कटबेल, बुटसेल के वृक्ष का प्रयोग में लाया जाता है। संतरी रंग के लिए पलाश के फूलों से तैयार किया जाता है। बरगद की पत्तियों के दूध से, गोबर के मिश्रण से प्रकृति और पौराणिक गाथाओं के वही चित्र उभारे जाते हैं जो उनकी शैली से मेल खाते हों। देवी देवताओं की उपासना में कई तरह के संगीत वाद्य को बजाते हुए भक्त गीत गाए जाते हैं। ये भक्त गीत मंत्र उच्चारण का ही रूप हैं। इन भक्ति गीतों में लोकगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक शामिल होते हैं। गीत की शैली इस बात पर निर्भर करती है कि किस देवी देवता की पूजा की जा रही है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण हमारी देव संस्कृति को प्रभावित ही नहीं कर रहा है। आज विलुप्त होती जा रही हस्तशिल्प लोक कलाओं के विलुप्ति का प्रमुख कारण है।
1: हाँ तो भैया
2: हाँ
1: दिनेश, देखा कितना बढ़िया बताएं। और ख़ास तौर पे भाई जो न अपने यहाँ लोक कला लोक संस्कृति की परंपरा रही है ना, वो बहुत भाई धनवान बाटे, ओकर समृद्धशाली बाटे, ओकर आदर लिहाज करे के चाहिए। देखा कि संदेश बापन छे सुनने।

0: हाँ
1: हाँ
0: भैया देखा, सनेस पंचरे सुन ले ना, तो चलो चलो। और पंचन से एक बात ही कहे कहा कि भाई अपन भी ख्याल रखें, पशु प्राणी का भी ख्याल रखें, समझता है ना। और ख़ास तौर पर खेती किसानी में तो देखे रहें, ताव तरक सवेरे संझा खेते के मेरे डांडे टहरें, देखें कि भाई कोनो रोग भी आता ना लगत है, खास तौर पर मक्खी जो लागत थी ना, वो
1: बिल्कुल
0: से बचाव
1: बिल्कुल।
0: रखें
1: एक
0: तो।
1: बात और सुमेर भैया,
0: हाँ
1: देखा कमो कोई हो तो भाई, देखा खेती किसानी संबंधित या गांव से जुड़े रोजी रोजगार के संबंधित में जानकारी तो हम सब देवे करी थे। कमो कोई यह होते कि हो सके किसान भैया अरे कुछ और जाने चाहत हो जो हम न दे पावत हो,
0: हाँ हाँ हाँ तो अपन सुझाव दें भाइयों।
1: अपन सुझाव दें और जो जानना चाहत हो अपन तो के लिए
0: देखा
1: कौन नंबर पर
0: हाँ
1: दें ये बता जा।
0: हाँ 800-4926250, समझता है ना भैया। यह नंबर पर अपन वो प्रतिक्रिया दें, वहाँ हिसाब से कार्यक्रम को बनावे में आसानी हुए तो चले के बेला होता तब
1: काहे
0: चल
1: का
0: जाए।
1: मतलब ये कि जो कार्यक्रम बा उनका कितना लाभदायक दिखान और का जाने चाहती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलेगा बेला हो तो पंचायत लग जा। अच्छा पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया था। लोकसभा ने आज इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने कल विधेयक को पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। इन अपराधों के लिए 3 वर्ष

0: तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और देश के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन लखनऊ से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी दी गई। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअली जुड़े 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहां मेडिकल कॉलेज है, गाजीपुर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गाजीपुर के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े स्थानों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल भारत, मिशन रोजगार के तहत लाखों नौजवानों को नौकरी मिल रही है। यूपी में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश व विकसित गाजीपुर के सारथी बनने का आह्वान किया।
2: आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी, जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8,000 से अधिक विवाद के मामलों में 2,173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5,000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन

0: शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर प्रदेश और देशवासियों के सुख शांति समृद्धि और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा और सुगम दर्शन की व्यवस्था को पूरे श्रावण मास में प्रभावी और निर्बाध रूप से बनाए रखे जाने का निर्देश दिया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सावन मास के प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। धाम में आने वाले भक्तों का पुष्प वर्षा और रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए धाम में 6 स्थानों पर जिग जैग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गौरी केदारेश्वर, तिल भांडेश्वर, महामृत्युंजय तथा BHU स्थित विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे सावन माह में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और DGP राजीव कृष्ण ने आज बरेली में बरेली व मुरादाबाद मंडल के जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
2: ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा सम्पन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई।
0: मुख्य सचिव ने कहा कि सभी एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम, इसमें लीजिए सुनिए वीरेंद्र तिवारी और हरिश्चंद्र पांडे का काव्य पाठ। सबसे पहले लीजिए सुनिए वीरेंद्र तिवारी का कविता पाठ।
1: सबसे पहले मैं तीन छंद सुना रहा हूं। शब्दों का शरीर हो शांत भले,

को मन में रघुनाथ सहायक हैं हर पल, करके विश्वास करें निज कर्म देते हैं वही सर्वोत्तम फल। यदि हो असफल तो विचार करें

तुझसे करुणा को भी है करुण रस मिला, तुझसे कमनीयता भी संवरती गई, तू हमेशा रही।

बनी, तुझसे उपकृत हुआ पूर्ण संसार नित, तू ही संजीवनी।

0: काव्य कॉमेडी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र तिवारी का काव्य पाठ, और लीजिए अब सुनिए हरिश्चंद्र पांडे का काव्य पाठ।
1: प्रस्तुत हैं भाषा संबंधी कुछ कविताएं। मुझे भाषा दो, मैं बोलता हूँ तो शब्द बिखर जाते हैं, मैं बोलता हूँ तो शब्द बिखर जाते हैं, पक्षियों मुझे भाषा दो। हरे जंगल मेरी सोच के मूल में हैं, हरे जंगल मेरी सोच के मूल में हैं, मैं बहुत दूर चला आया हूँ हरे जंगलों से, दिशाहीन यात्रा में जैसे भटक जाती है शक्ति, मेरी भाषा भटक गई है। हरे जंगल मेरी सोच के मूल में हैं, मैं बहुत दूर चला आया हूँ हरे जंगलों से, दिशाहीन यात्रा में जैसे भटक जाती है शक्ति, मेरी भाषा भटक गई है। पक्षियों मुझे झरनों की निकटता का एहसास दो, मैं चहकूं तो लगे उषा प्रकाश की अगवानी में चादर बिछा रही है, मैं चहकूं तो लगे उषा प्रकाश की अगवानी में चादर बिछा रही है, हवा देवदार उसे लिपट रही है, गाय रभाती भी चली आ रही है बछड़े के पास, मैं चहकूं तो लगे शब्द एक घना पेड़ है, मैं चहकूं तो लगे शब्द एक घना पेड़ है, मैं कविता को फुनगियों पर लहराना चाहता हूँ, मैं चहकूं तो लगे शब्द एक घना पेड़ है, मैं कविता को फुनगियों पर लहराना चाहता हूँ, मुझे भाषा दो पक्षियों, मुझे भाषा दो। अगली कविता है बच्चे का बोलना। बच्चा बोलना अभी सीख रहा है, बच्चा बोलना अभी सीख रहा है, खत्म को दोनों हथेलियां नचाता हुआ कहता है तम, बच्चा बोलना अभी सीख रहा है, खत्म को दोनों हथेलियां

ये नचाता हुआ कहता है, तम कल बिजली जाते ही दूध का गिलास ढुलक गया उससे। कल बिजली जाते ही दूध का गिलास ढुलक गया उससे। उसने हाथ नचाते हुए कहा, तम चारों ओर उजाला हो गया, चारों ओर उजाला हो। अगली कविता, यहाँ से। जो भी गया यहाँ से, जंगल गाढ़ गधेरे धुने सब लेता गया साथ अपने। जो भी गया यहाँ से, जंगल गाढ़ गधेरे धुने सब लेता गया अपने साथ, पर यहाँ जरा भी कम नहीं हुआ कुछ भी, पूरे में से पूरा निकलकर पूरा बचा रहा। जो भी गया यहाँ से, जंगल गाढ़ गधेरे धुने सब लेता गया साथ, पर यहाँ जरा भी कम नहीं हुआ कुछ भी, पूरे में से पूरा निकलकर पूरा बचा रहा। जो आया, जो आया, एक भी फूल गांव जवार के जूड़े में उसने खोसने नहीं दिया, एक भी फल जमीन का गुरुत्वाकर्षण नहीं पा सका। जो आया, एक भी फूल गांव जवार के जूड़े में उसने खोसने नहीं दिया, एक भी फल जमीन का गुरुत्वाकर्षण नहीं पा सका। जो भी आया, थनों के लिए आया, मुख के लिए कोई नहीं आया। जो भी आया, थनों के लिए आया, मुख के लिए कोई नहीं। भाषा बोली संस्कृति डोली के अग्रिम कहारों में थी, भाषा बोली संस्कृति डोली के अग्रिम कहारों में थी, वह आठवीं अनुसूची के दरवाजे को पीट रही है बड़ी देर से। अगली कविता है, मनुष्य बनाती भाषा के दिन। दूर दूर तक नहीं दिखता है कोई भी बच्चा, दूर दूर तक नहीं दिखता है कोई भी बच्चा, ये कैसा समय है। घास दिख रही है लंबी लंबी हरी, तारे दिख रहे हैं और भी साफ पूरम पूर, गहरे पानी में मछलियां दिख रही हैं तैरती हुई, दूरस्थ हिमालय की चोटियां भी दिखने लगी हैं, पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं। यह कैसा समय है। घास दिख रही है लंबी लंबी हरी, तारे दिख रहे हैं और भी साफ, गहरे पानी में मछलियां दिख रही हैं तैरती हुई, दूरस्थ हिमालय की चोटियां भी दिखने लगी हैं, पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बच्चे ही तो थे मेरा सूर्योदय, बच्चे ही तो थे मेरा सूर्योदय, मैं एक ध्रुवीय सूर्यास्त में पड़ा हुआ हूँ। अपने अपने घरों से निकले फूल से ये बच्चे सुबह सुबह मुझे एक फुलवारी में तब्दील कर देते थे। अपने अपने घरों से निकले फूल से ये बच्चे मुझे एक फुलवारी में तब्दील कर देते थे। हाफ टाइम में जब खुलते थे इनके टिफिन, तो खुशबुओं से मेरा प्रांगण पट जाता और मेरे अहाते का आकाश पक्षियों से पट जाता। आओ बच्चों, बहुत उदास हूँ मैं, आओ बच्चों, बहुत उदास हूँ मैं जो अनंत समय को घंटा बनाकर ऊंचाई पर टांग देता था, मैं जो अनंत समय को घंटा बनाकर ऊंचाई पर टांग देता था, मैं जो छोटी छोटी गैर हाजिरी पर तुम्हें मुर्गा बना देता था, तुम्हें याद कर रहा हूँ बेतरह। मैं कहाँ से लाऊं वह रजिस्टर जिसमें सारे के सारे बच्चे अनुपस्थित किए जा सकें एक साथ, मैं कहाँ से लाऊं वो रजिस्टर जिसमें सारे के सारे बच्चे अनुपस्थित किए जा सकें एक साथ, मैं कैसे पूछूं वह कारण जिससे पूरी कायनात बावस्ता है। देखो इतनी बारिश हुई पर एक भी रेनी डे नहीं हुआ, एक दिन की छुट्टी में कितना झूम जाते थे तुम, अब इतनी छुट्टियां हैं और तुम बिना पानी के पौधे की तरह मुरझा रहे हो। आओ बच्चों, आओ फिर से शरारत करो, उधम मचाओ, तुम्हारे परस्पर दांत गड़ाने के सांचे मेरी यादों में नत्थी हैं अभी भी, और गिरकर उठने की धूल झाड़ती सरपट मुद्राएं भी। आओ कि झाड़ू खुद गंदे हो गए हैं, आओ कि झाड़ू खुद गंदे हो गए हैं, रोशनदानों में मकड़ियों ने जालीदार पर्दे टांग दिए हैं, मैं तुम्हारी दृश्य नीयू हूँ बच्चों। आओ दूसरों की सुनना और अपनी कहना सीखो, आओ कि नेटवर्क की पहुंच के बाहर है एक बहुत बड़ी दुनिया, आओ कि नेटवर्क की पहुंच के बाहर है एक बहुत बड़ी दुनिया, जहां बच्चों के लिए दुधारू जानवरों को बेचकर स्मार्टफोन खरीदे जा रहे हैं। आओ बच्चों, आओ फिर से लाओ ब्लैक बोर्ड वाले उजले दिन, मनुष्य बनाती भाषा के दिन।

काव्य कौमुदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र पांडे का काव्य पाठ, और इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं ज्योति आनंद। लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ब्रह्मानंद की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ज्योति आनंद के स्वर में गीत और भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा

चर्चा में भाग लेते हुए डीएम के सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएम के सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने

के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने

सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकिलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से

0: केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए हैं बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20,00,000 बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस की रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 31 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पंचायत घर कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे प्रोफेसर SD मैकार्टी। आप अपने प्रश्न शाम 6:30 से 7:15 तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और दूसरा नंबर 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए, 0532-2970462 और 0532-2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8004926250। इस पर आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। चित्रपट संगीत लीजिए सुनिए। कार्यक्रम में शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म तुम्हारे लिए का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत रचना नक्श लालपुरी की, संगीतकार जयदेव।

लीजिए, अब सुनिए फिल्म शोर का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। और इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। लीजिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में ये भक्ति रचना।

इसी के साथ सबरस कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।

0: श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। यह फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
7: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इको

0: सिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नुआपड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद

0: भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Rajya Sabha, the discussion is underway on public examinations, Prevention of Unfair Means, Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh moved the bill. चेयरमैन सी पी राधाकृष्ण

0: Mohammad Basil M claimed silver last night. India holds the 8th spot in the Commonwealth Games medal with 15 medals including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. In Taipei Open Badminton, Unnati Hooda, Devika Sihag, Tanvi Sharma and Kiran George have progressed to the singles quarterfinals. However, Anmol Kher and Aejas Pranoy crashed out in the second round matches today. Unnati Hooda defeated Tanya Hemant in an all-Indian tie. Tanvi Sharma defeated Indonesia's Thalita Wiryawau to reach the last 8. Devika Sihag beat Indonesia's Nikadek Dinda Pratiwi. Devika and Unnati will face each other in the top 8. Kiran George kept the Indian challenge alive in the men's singles defeating compatriot Tharun Mannapalli. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points or 0.35% to close at 77,928, while Nifty added 67 points or 0.3% to settle at 24,317. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज हासिल होगा जो कौमी तराने को हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाहों समेत शहरियों के मफादात के तहफ्फुज के लिए एक मुत्तहिदा निज़ाम कायम किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने नीट एहतजाज में हिस्सा लिया था। अलबत्त मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को कोई तहफ्फुज हासिल नहीं होगा। अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया के तनाज़े के फौरी हल की उम्मीदें मांद पड़ गई हैं। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल इंतहाई तेज़ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। दौलत मुश्तरका खेलों में जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह मर्दों के फाइनल में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी ताज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज इस बिल को मंजूरी दी, राज्यसभा में ये बिल कल मंजूर हो चुका है। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कौमी ताज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 1971 में मजीद तरमीम के लिए बिल पेश किया। इस कानून की रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ़ फराहम किए जाने की बात की गई है जो कौमी तराने जन मन गण को हासिल है। इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि यह बिल सिर्फ एक कानूनी तरमीम नहीं है बल्कि यह बिल भारत की सकाफती विरासत, कौमी शनाख्त और मुल्क की जद्दोजहद आजादी के मिसाली तसव्वुरात की नुमाइंदगी करता है।
2: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: इससे कल बहस में हिस्सा लेते हुए डीएमके

0: हाई अलर्ट जारी है क्योंकि सैलाब के पानी के बाइस महानदी दरियाई निज़ाम में तुगयानी आ रही है। इसी के साथ इम्कान है कि बहुत बड़ी मकदार में सैलाब का पानी आज शाम तक मुंडाली पहुँच जाएगा। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में नीरज चोपड़ा मर्दों के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह भी इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज 5वें मकाम, रोहित यादव 9वें और यशवीर सिंह 10वें मकाम पर रहे। इससे पहले भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों के पैरा एथलेटिक्स मुकाबलों में मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल मुकाबले में दिलीप महादो गविट ने सोने का और मोहम्मद बासिल मोरिसिंग काथ ने चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम की। गाविट ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 10.71 सेकंड का एक नया रिकॉर्ड कायम किया और सोने का तमगा जीता, जबकि बासिल भी इस सीज़न के बेहतरीन रिकॉर्ड 10.83 सेकंड में अपना गेम पूरा करके दूसरे मकाम पर पहुंचे। इंग्लैंड के केविन ने 10.85 सेकंड में अपना खेल मुकम्मल करके कांसे का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों के पैरा 100 मीटर T47 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने के लिए दिलीप महादो गाविट को मुबारकबाद दी है। इसी के अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज़ हासिल होगा जो कौमी तराने को हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाहों समेत शहरियों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए एक मुत्तहिदा निज़ाम कायम किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने नीट एहतजाज में हिस्सा लिया था। अलबत्त मुजरमाना पस मंजर रखने वालों को कोई तहफ्फुज़ हासिल नहीं होगा। अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया के तनाज़े के फौरी हल की उम्मीदें मांद पड़ गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: राकेश जी। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
3: जो एक सेगमेंट जिसमें की बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे। अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चले तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है कि जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह है उस फिर भी अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा।
2: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और अभी हमारा जो फोकस है एक तरह से देखा जाए टेलीकॉम के उपकरणों के निर्माण पर है। और डिस्प्ले की बात करते हैं, हम फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
3: देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं
2: जी।
3: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं तेजस नेटवर्क HFCL जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कॉम्पिटिटिव है। तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस।

0: जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इसमें काफी शब्दा है और सरकार जो है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे।
1: जी, एक समय था जब भारत टेलीकॉम उपकरणों के लिए काफी हद तक आयात पर भी निर्भर था, जैसा कि आपने जिक्र किया, और सरकार अब घरेलू निर्माण पर काफी जोर दे रही है। तो इसके लिए सरकार ने भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की है। तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके पीछे की असली सोच क्या है और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इसके क्रियान्वित होने के बाद?
0: ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ग्वालियर शहर में 70 एकड़ लैंड और ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर वहां पर करीब 100 एकड़ लैंड का प्रोविजन किया गया है। ये फेज 1 में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इको सिस्टम भी वहां पर लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑलरेडी फील्ड विजिट्स में मैं भी ग्वालियर और भोपाल में एक विजिट में ऑलरेडी जा चुका हूँ। इंडस्ट्री के लोग जो है ज्यादा मीटिंग्स में भी जा चुके हैं और इंडस्ट्री के साथ कॉपरेशन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो हैं, अच्छे से अच्छे इंसेंटिव जो दिए जा सकते हैं वो दिए जाए। कई सरकारों ने भी सिमिलर जोन स्थापित करने का प्रयास किए लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो उन सब में एक अलग है और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
1: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की जा रही है तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे, क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतरराष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
0: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो 5G और 6G में इंडिया का बहुत अच्छा रोल जा रहा है। दुनिया भर में 5G में नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ZTE एंड हुआई खाली 5 प्लेयर्स हैं लेकिन इंडिया में जो है करीब 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में जाने में सक्षम है। ऑलरेडी BSL MTL के नेटवर्क में गैलोर और लेखा वायरलेस दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है। मे बी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट। तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है। मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे। हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में
1: जी।
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS में जीता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया। ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन, UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है क्या इंडिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है
1: जी।
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा
1: जरूर।
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है। मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा। अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, 3 स्टेप के ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 10,000 रुपीज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर। तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हर एयरपोर्ट में, अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, लंदन का एयरपोर्ट हो या पेरिस का एयरपोर्ट हो, तो सब जगह पे कन्वर्शन सेंटर्स लगे होते हैं कि आप मैनुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। नई सुविधा जो है ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है। तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इंडिया में इस तरह करने की बहुत क्षमताएं हैं और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल

0: है अभी तक जो कंपेरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है।
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हैं तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है, और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए।
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है, इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स इसके साथ जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं, और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है। कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है। करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है।
1: जी
0: UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है, और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं। तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218,
1: जी
0: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था, और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी में हमने इंस्टॉल किया। इसमें सेटेलाइट सुविधा भी गाँव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इम्प्लीमेंट करना है
1: जी
0: तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं। अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है,
1: जी
0: तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती है। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पर लगाई है, तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही है।
1: जी
0: अभी गाँव में तालाब है तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए तो वो भी आपको कितनी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वेदर फिश को सर्वाइव करने के लिए ठीक है या कम है वो आपको पता लग जाएगा।
1: जी
0: आपको जो है सर्वेलेंस है वो आप कर सकते हैं,
1: जी
0: हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं। दिल्ली में अगर आप एक HbA1c टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ACG कराते हैं तो आपको रिजल्ट्स कब मिलते हैं, नॉर्मली आपको रिजल्ट्स अगले दिन तक ही मिल पाते हैं, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दिखा दिया कि 15 मिनट के अंदर में आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ब्लड टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ECG के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे,
1: जी
0: और आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो लंदन में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो या नागपुर में बैठा हो कंसल्टेशन कर सकते हैं, और डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ जहाँ पे आप गांव में बैठे हैं वहां पे आ जाएगी और वहीं पर ही आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है।
1: जी
0: तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 मिनट में हो रहा है। तो गांवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गांव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3,580 के लिए प्रयास कर रही है और इसी साल में 75 इसी तरह के गांव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं।
1: जी थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे, और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
0: हमने सतनावरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था, 4G प्राइवेट नेटवर्क, सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सैटेलाइट में हमारे ही कुछ प्लेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े,
1: जी
0: उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक में बहुत आपको आश्चर्य भी होगा कि नॉर्मली सैटेलाइट में रूफ टॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं
1: जी
0: और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही विल बी रेडी विद अ सॉल्यूशन।

0: में कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है
1: जी,
0: ये इंडिया में होने जा रहा है
1: जी। राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, ओपन RAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
0: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है।
1: जी
0: और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, तीन विशेषज्ञ तीन प्रोफेसर भी आए थे और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं, हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं
1: जी,
0: क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
1: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: कि साथ में
1: आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: क्वेश्चन नंबर 21।
4: प्रश्न संख्या 121। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
3: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
2: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: थैंक यू सर। विल द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बी प्लीज्ड टू स्टेट वेदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एनी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर एंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ग्राम सभास, वीमेन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन planning and implementation. Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports. Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation. The expected...

0: इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी।
2: धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है।
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है। वो बायोडाइवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122 श्रीमान ये

0: यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है।
1: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है, वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
2: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी।
3: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है। ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है।
2: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
4: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
2: Honorable Minister.
3: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
2: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
6: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented.

0: implemented under the new courts to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
2: Maniya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ACESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है ESIC के लाभार्थी है उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा और लेबर कोड तो 2019 और 2020 में बना था लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
3: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उसी इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदले और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का

0: तरकीब तकनीकी का ज्ञान दिया गया है ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा ITI की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक ITI काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग VDA पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर

0: भी है, तीन क्लासिफिकेशन दी है, ए बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है, और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है, और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
4: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDR के द्वारा, VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
5: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ। सर, माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में, किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों

0: को भी जो कंटेक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या और कि ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर,
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं, किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
3: 124
4: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांग जनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर,
4: रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
5: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
6: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं है कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है।

0: Second supplementary, Sriman Ghulam Ali Ji.
1: Shukriya, Chairman Sir. मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है. हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं. मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का. मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा. शुक्रिया.
0: ऑनरेबल मिनिस्टर.
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए. इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे. जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है. और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है. सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं. एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं. युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए. इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे. एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए. हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारे देश की जिम्मेवारी है. और हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है. और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है. सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े. इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है.
0: थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर कविता पटेलदार.
3: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
0: ऑनरेबल मिनिस्टर.
4: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग

0: का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है। और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा दशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125।
5: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक है।

0: कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
3: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं। महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में? हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसको आंकर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोगों नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। नया सब्सक्राइबर पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 रही, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना

0: शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1,00,000 करोड़ लगा रहे हैं। यानी किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना, यानी नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ, पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, यानी सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है, जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के, तो ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे, उसको हम पूरा निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षा के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3,500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स से सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को

0: देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
3: प्रश्न संख्या 126। क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
4: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: थैंक यू सर। Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiary?
1: Honorable Minister.
4: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चा हुआ, कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो उस स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंडिया जी।
5: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का वो अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
1: The House stands adjourned to meet at 2 PM.
6: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour.

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जाँच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की

0: स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, "Keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre." The Prime Minister said today Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent, technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws, and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide timely information, emergency assistance, and counseling to seafarers and their families. Delhi government has said that Delhi police will not take any legal adverse action against individuals who participated in the NEET.